न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज है बृहस्पतिवार, शक सम्वत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, ईस्वी सन 2026, दिनांक 14 मई। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, गुण सीखने में कभी भी आलस्य ना करें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। ये था आज का चिंतन। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस कान भाग 188। बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा। ये आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनेगा शायर और सेवानिवृत्त राजेश रेड्डी से बातचीत। 11 बजे रंग तरंग,

12 बजे यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। 2:30 पर सुनेगा सदाबहार नगमे और 3 बजे सखी सहेली। 2 बिना जग सुना कहानी पद्मश्री भूरीबाई, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकार भूरीबाई के बारे में सुनिएगा। और मुझे कुछ कहना है, किस्तों पर खरीदारी कितनी सही, और कुछ उपयोगी टिप्स

शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, 5 बजे छाया गीत सुनेगा। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आपको फिर से बता दे, श्रृंखला सुनिएगा ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। 7 बजे पहुंची साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, इसके अंतर्गत सुनिएगा गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रिकर की बातचीत भाग दूसरा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटिका मंगल वरदान, लेखन कुंभेश श्रीवास्तव, निर्देशन है पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे चाहेगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 188।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: किलक की उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम की महिमा का गान संत तुलसीदास ने जैसा किया है वैसा संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है और श्री अनूप जलोटा अपने कंठ से इन रचनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने सुरों से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आंखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनूप जी हमें इस भक्ति रचना के बारे में बताइए जिसका हमने जिक्र किया।
2: ठुमक चलत रामचंद्र सबसे पहले पंडित डीबी पलुस्कर जी ने गाया था और ऐसा गाया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं लेकिन वैसा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं जिससे कि

पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं जिससे कि भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।

भगवान राम की वो आयु है, वो अवस्था है कि अभी चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कोई उठा देता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाए।

नजर नहीं आ रही, जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में यह कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है।

गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान राम के सुंदर चेहरे की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं। और कोई कवि होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है, या जैसे चंद्रमा है, या जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज

0: बहुत सुंदर, सचमुच हम आंखें बंद करके बैठे थे और जिस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा, आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी, श्री राम भजन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस रूप को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
1: भगवान राम के कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शबरी हैं, जैसे केवट हैं। तो केवट का एक भजन है, मैं बहुत गाता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन आपको
0: बहुत अच्छा लगेगा।
1: राग गुजरी तोड़ी के रंग को लेकर इसे कंपोज किया गया है।

लेकिन केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने पूछा, जरा स्पष्ट करो, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला,

0: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में

भोले मिश्रे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के गाए इस गीत से।

हर की नजर देख लो इधर चूड़ियां पे तुम करो ना फिकर भूल न जाना दिल को लेकर घायल मन है जख्मी जिगर जब से लड़ी तुमसे नजर हम है उधर तुम हो जिधर आओ जिगर ने मिल के

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम का गाया रेल का डब्बा फिल्म का गीत। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और गुलाम मोहम्मद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पतिता फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: मिट्टी से खेलते हो, बार बार किस लिए। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे पतिता फिल्म से। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में परछाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। नूर लखनवी ने इस गीत को लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे हम।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम और प्रणाम अयोध्या प्रसारित होगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान जरूर रखें विषय पर आज की बात। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद की स्थापना और उद्देश्य। जानकारी देंगे श्री विश्व प्रकाश टेक चंदानी। इसके अलावा सुबह 9:00 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और सुबह 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। फोन नंबर होगा 7376804090। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसके बाद फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुनेंगे दोपहर 1:00 से। साथ ही 2:00 से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतांजलि और बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत दोपहर 2:30 से, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा वृक्ष लगाएं धरा को हरा भरा बनाएं और कामकाजी महिलाएं और उनका स्वास्थ्य। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी और इसके अलावा शाम 5:00 से प्रसारित किया जाएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज खास होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद। इसमें आज का विषय होगा कैसे बचाएं पर्यावरण को। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30 पर और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। इसके अलावा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और 6:45 पर किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसानवाड़ी, जिसमें आज खास होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम

किसान हेल्पलाइन और इसमें आज का विषय होगा इस समय फल वृक्षों में समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जगवीर सिंह। 8:15 पर कार्यक्रम होगा गीत गुंजन और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे महफिल गजल। इसके बाद रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इसके अलावा समाचारों का अनुप्रसारण आप सुनेंगे अपने निर्धारित समय पर। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 7:18 होने को है। अब से कुछ ही पलों में 7:20 पर आप सुनेंगे गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824

0: फ्लैट मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की MSP वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
4: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने, और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध

0: तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई हैं। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: वन जीरो वन पॉइंट नाइन FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने

0: अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अमृत कलश में आइए सुनते हैं ये पहला भजन लता मंगेशकर की आवाज में।

0: वीर, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पड़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे।

0: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
3: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
2: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
3: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
2: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
3: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
2: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
3: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
4: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।

0: नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
2: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE

0: ही भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि

0: की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से

0: संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्य की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं, तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
5: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: सुरसंगम में आइए सुनते हैं ये पहली गजल स्वाति नाटेकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं,
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
1: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारी धरोहर। दोस्तों, हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर की उस मजबूत दीवार को भी भूल जाते हैं जिसने हमें धूप और बारिश से बचाकर बड़ा किया है। साथियों, कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों की हंसी गूंजती है वहां साक्षात ईश्वर का वास होता है। बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की वो चलती फिरती किताब होते हैं जिन्हें पढ़कर हम जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। आज के दौर में हम मोबाइल और लैपटॉप में इतने खो गए हैं कि बगल में बैठे दादा दादी या माता पिता से बात करने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। याद रखिए, उन्हें आपके महंगे गिफ्ट्स यानी और नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस आपका थोड़ा सा प्यार और समय। दोस्तों, हम छोटा सा प्रयास करके उन्हें बड़ी से बड़ी खुशी दे सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें सम्मान का एहसास कराना ये बहुत जरूरी है। दिन भर में कम से कम 15 मिनट उनके पास बैठे और उनके समय की बातें पूछें। दोस्तों, उनके खाने पीने और दवाइयों का समय पर ध्यान रखें क्योंकि सेहत और देखभाल बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर साथ छोड़ता शुरू कर देता है, कभी घुटनों में दर्द तो कभी आंखों की कमजोरी। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम उनकी लाठी बने, महीने में एक बार उनका चेकअप अवश्य करवाएं, उनके साथ टहलने जरूर जाएं, इससे उन्हें अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। दोस्तों, डिजिटल दुनिया का जमाना है, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए उन्हें भी थोड़ा बहुत स्मार्टफोन चलाना सिखाएं ताकि वे अपने पुराने मित्रों से जुड़ सके और भजन भी सुन सके, क्योंकि जब वे नई चीजें सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। दोस्तों, घर का कोई भी छोटा सा या बड़ा फैसला हो उनसे सलाह जरूर लें। भले ही आप उनकी सारी बातें ना माने, लेकिन उनसे पूछने मात्र से उन्हें ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि वे आज भी परिवार का एक जरूरी हिस्सा है। साथियों, वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों का ध्यान रखना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है बल्कि ये एक स्वस्थ और संवेदनशील समाज की पहचान भी है। उनके साथ बात करें और उनकी भावनाओं को सुने। घर में ऐसा माहौल बनाए जो उनकी शारीरिक कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित हो, जैसे फिसलने से बचाना, चलने वाली जगह पर रोशनी का पूरा ध्यान रखना, साथ ही एम्बुलेंस और नजदीकी डॉक्टर का नंबर हमेशा अपने पास में रखें। इसके अलावा उन्हें उनके पसंदीदा काम जैसे बागवानी, पढ़ाना या पुराने संगीत सुनने के लिए प्रेरित करें। उन्हें दोस्तों और उनके दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करें। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को समाज और परिवार में सम्मान और गौरवपूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ध्यान रखें, बुजुर्गों को केवल भोजन या आश्रय नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि आज हम जो अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं वही कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद का वट वृक्ष है। उनकी दुआओं में वो असर है जो किसी भी दवा में नहीं है। तो आज जब आप घर जाएं तो अपने घर के बड़ों के पास बैठकर उनका हाथ थामे और मुस्कुरा कर कहें, हमें आपकी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और खुश रहें। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आवाज है किशोर कुमार की, गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
3: श्रोताओ, आइए सुनते हैं विश्व प्रकाश तेज चंदानी की वार्ता, जिसका विषय है राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद की स्थापना और उद्देश्य।
4: राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के गठन हेतु यह जानना भी आवश्यक है कि भारत का सिरमौर रही सिंधु संस्कृति व भाषा के लिए वर्ष 1947 में हुआ भारत का विभाजन पराभव की तरह आया। लाखों सनातनी सिंधी भाषी इस अनचाहे आए विभाजन की चपेट में आकर अपनी धर्म, संस्कृति, भाषा, जीवन रक्षा की खातिर अपना धन, संपदा, ऐश्वर्य, कार्यस्थल सब कुछ छोड़कर कहानी, कविताओं, भाषाओं और लोक संस्कृति को दिल में बसाकर विभाजन के बाद देश सिंध प्रदेश को नए देश बनाने की घोषणा के साथ सब छोड़ छाड़ कर वहां से निकल पड़े। अनिश्चित भविष्य के बीच परिवार के लालन पालन की प्राथमिकता में वर्ष 1947 में प्रारंभ हुई यह अनचाही यात्रा को ठौर मिला 10 अप्रैल 1967 में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री व तत्समय नेता विपक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी व श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि तत्समय लोकसभा के सिंधी भाषी सदस्य थे व सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सिंधी भाषी सांसद माननीय जयराम दास दौलतराम के सामूहिक प्रयास से सिंधी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। नेता विपक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में भाषण करते सिंधी भाषा को राजाश्रय की पैरवी करते हुए कहा था कि हिंदी मेरी माँ है पर सिंधी मेरी मौसी है, और यदि सभी भारतीय भाषाओं में बहनों सा प्रेम होगा तब ही भारत की प्रगति होगी। तदुपरांत सिंधी भाषा को मान्यता मिलने के लगभग 26-27 वर्ष बीत जाने के बाद भाषा को राजाश्रय मिले और उसकी विकास यात्रा तेज हो, वर्ष 1994 के मई माह की 26 तारीख को देश की सरकार द्वारा सिंधी भाषा संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन व प्रसार हेतु गठन हुआ एक स्वायत्त शासी संस्थान राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, जिसे NCPSL यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, इसका 26 मई 1994 को विधिवत गठन कर लिया गया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त शासी संस्था राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का मुख्य कार्य संपूर्ण भारत में योजनाओं के माध्यम से सिंधी भाषा के प्रसार, संरक्षण व विकास हेतु कार्य करना तय किया गया। वार्षिक बजट के रूप में भारत सरकार NCPSL को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संस्थान का मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में है। UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार सुनिश्चित मानक को पूरा करने वाले विद्वान, शिक्षाविद इस संस्थान के डायरेक्टर के रूप में चुने जाते हैं। साक्षात्कार व सुनिश्चित मांग के अनुरूप कार्य अनुभव वाले निदेशक चुने जाने वालों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। चयनित निदेशक संस्थान के उपाध्यक्ष व सदस्य प्रतिनिधियों के प्राप्त सुझाव पर नियमानुसार संस्थान के कार्य का क्रियान्वयन कराते हैं। संस्थान के अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उपाध्यक्ष पद पर समाज से नामित डॉक्टर मोहन मंगनानी जी शिक्षाविद हैं। उप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी राजस्थान से हैं। सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अनेक समाज के विद्वान जो अलग अलग प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे इसमें चुने जाते हैं। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लेखा विभाग व अन्य प्रशासनिक अनुभव वाले उच्च अधिकारी भी संस्थान के सुचारू संचालन में सहयोग व नियमानुसार मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य सिंधी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना और

नई पीढ़ी में भाषा के प्रति रुझान पैदा करना है। परिषद की प्रमुख योजनाओं में सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स को देश भर में चलाया जा रहा है। SLLC केंद्रों के द्वारा हजारों हर उम्र वर्ग के विद्यार्थी सिंधी भाषा को सीखने के लिए आगे आ रहे हैं। सिंधी भाषा के अब तक सर्वाधिक 9 केंद्र विश्वविद्यालयों के कुलगुरु व NCPSL निदेशक के बीच MOU करके खोले गए हैं तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस सिंधी भाषा अध्ययन केंद्र के संचालन हेतु 1-1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड भी दिया गया है। सिंधी भाषा के ऐसे विशेष कार्य करने से संस्थान का बजट बढ़ाकर करीब 12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का एक केंद्र संत कंवर राम सिंधी भाषा अध्ययन केंद्र के

0: एक केंद्र संत कंवर राम सिंधी भाषा अध्ययन केंद्र के नाम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में तत्समय के कुलगुरु व एनसीपीएसएल के निदेशक के बीच एमओयू साइन के साथ भव्य समारोह आयोजित कर प्रारंभ किया जा चुका है। एमए सिंधी की कक्षाएं भी संचालन हेतु इस केंद्र को सौंप दी गई हैं। संत कंवर राम साहेब सिंधी अध्ययन केंद्र इसमें विशेष रुचि लेकर बहुत ही सुंदर ढंग से इन कक्षाओं का भी संचालन कर रहा है। सुनिश्चित 20 सीटों के सापेक्ष यहां हमेशा प्रवेशार्थियों की संख्या में वृद्धि रहती है। साथ ही साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, अजमेर विश्वविद्यालय राजस्थान, मुंबई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र सहित इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आदि अन्य विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन केंद्र बहुत ही प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं। स्नातक, परास्नातक, सिंधी सर्टिफिकेट, सिंधी डिप्लोमा, एडवांस सिंधी डिप्लोमा कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ग्रीष्मावकाश में नए विद्यार्थियों को खोजकर उन्हें इन कक्षाओं से जोड़कर रोजगार परक मार्गदर्शन देने का कार्य भी एनसीपीएसएल के द्वारा किया जा रहा है। सिंधी लेखकों, रचनाकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता व साथ ही बल्क परचेज योजना के तहत 1000 से भी अधिक पुस्तकों का क्रय करके इच्छुक स्कूल व लाइब्रेरी आदि में जन सामान्य के पाठन हेतु निःशुल्क पुस्तकें संस्थान द्वारा दी जा रही हैं। सिंधी लेखकों, विद्वानों का सम्मान व सिंधी भाषा प्रसार में लगी गैर सरकारी संस्थाओं को भी नियमानुसार अनुदान दिया जा रहा है। हर भाषा के दुर्लभ ग्रंथों का सिंधी अनुवाद कर उपलब्ध कराया जा रहा है। बीते दिनों भारतीय संविधान का सिंधी भाषा में लिप्यंतरण एनसीपीएसएल के पूर्व निदेशक द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के साथ पूर्ण किया गया है। भारतीय संविधान के इस सिंधी भाषा में लिखित संविधान का लोकार्पण दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में देश के उपराष्ट्रपति माननीय सीपी राधाकृष्णन जी व कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा 10 अप्रैल 2026 को समारोह पूर्वक किया जा चुका है। साथ ही साथ देश की सिविल सेवा परीक्षा आईएएस में सिंधी भाषा लेने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर भी प्रतिवर्ष देश के अलग अलग भागों में लगाए जा रहे हैं। एनसीपीएसएल अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सिंधी भाषा संस्कृति के प्रसार के कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित कर रहा है। सामुदायिक रेडियो तथा सिंधु शोध पीठ के माध्यम से भी सिंधी भाषा के प्रसार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अखंड भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रही सिंधी संस्कृति व सिंधी भाषा को यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की वेबसाइट ncpsl.gov.in पर जाकर अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार से पा सकते हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, एनसीपीएसएल के स्थापना दिवस 26 मई पर आप सभी प्यारे श्रोताओं को बधाई और अभिनंदन।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद की स्थापना और उद्देश्य, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे विश्व प्रकाश टेकचंदानी। और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में कयामत से कयामत फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं अब आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम में जिले में बेटियों का दबदबा रहा। टॉप 5 में 4 पर छात्राओं ने कब्जा किया। जिंगल बेल स्कूल की जयती छापड़िया ने 99.2% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया। अवध इंटरनेशनल की आयुषी ठाकुर ने 99% अंक के साथ दूसरा और जिंगल बेल स्कूल की आनंदिता चतुर्वेदी 98.4% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्षेत्रीय सेवा नियोजन कार्यालय की ओर से 15 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला फतेहगंज लालबाग स्थित कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ई रिक्शा तय रूटों पर ही चलेगा वरना लगेगा जुर्माना। अब जाम के झाम से नगरवासियों को मिलेगी राहत। भारत खंडे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में गायन वादन और

नृत्य की विभिन्न विधाओं के पाठ्यक्रमों में 30 जून तक आवेदन किए जाएंगे। अयोध्या में बुधवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। करीब तीन बजे के बाद तेज धूल भरी आंधी चली और देखते ही देखते काले घने बादल छा गए। शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। पीएम की अपील के बाद ईंधन खर्च घटाने में जुटा नगर निगम। डीजल बचाने के लिए अयोध्या नगर निगम की नई पहल, जनरेटर कम चलेंगे, कर्मचारियों को सार्वजनिक वाहन से आने के निर्देश। अयोध्या नगर निगम ने बढ़ते डीजल खर्च में कटौती के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। महापौर और नगर आयुक्त के बीच हुई बैठक के बाद विभागाध्यक्षों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग एवं राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला के छठे दिन छात्र छात्राओं ने कैनवास पर आधुनिक और पारंपरिक कला के समन्वय को उतारा। आजादी के दशकों बाद 405 मजरों में पहुंची बिजली, RDSS योजना से 16 बस्तियों का विद्युतीकरण पूरा, 66 घरों को मिले कनेक्शन।

0: प्रणाम अयोध्या। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं व्हाट्सएप पर फरमाइशी कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91 61 877 347।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रियंका। और ये पहली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से। गगनदीप थांदी, चित्रा कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी की। आप सभी सुनना चाहते हैं अखियों के झरोखे फिल्म से ये गीत हेमलता की आवाज में। गीत व संगीत है रविंद्र जैन का।

अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है दुर्गा कॉलोनी हासी से। राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू की आप सभी सुना चाहते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल है गुलजार के और संगीत दिया है मोहम्मद खयाम ने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो
2: हेलो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। अगली व्हाट्सएप फरमाइश हम तक पहुंची है नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, सुभाष प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश जायसवाल की। आप सभी सुनना चाहते हैं खानदान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र किशन के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है फाजिलका पंजाब खेड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और आपका समस्त खेड़ा परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं बाबू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: तुम्हारा कैर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अगली व्हाट्सएप फरमाइश हम तक पहुंची है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं एसपी नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से फरमाइश आई है नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष इंगले की। और आप सभी सुनना चाहते हैं बेटा फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। समीर के लिखे गीत को अपने संगीत से पिरोया है आनंद मिलिंद ने।

0: दुकान में?
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट
5: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
6: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
5: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
6: और साथ में अपना नाम, पता
5: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
6: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट

0: बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
1: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: हेलो अयोध्या कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो
6: हेलो
5: हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? बलिया से बात कर रहे हैं आप?
6: सुल्तानपुर।
5: अच्छा, सुल्तानपुर पलिया से बात कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका?
6: रमेश
5: नाम है। रमेश जी क्या करते हैं आप?
6: मैं किराना स्टोर से बात हूं, सेकंड की दुकान करता हूं।
5: बहुत अच्छी बात है। इस समय क्या कर रहे हैं आप?
6: दुकान से हफ्ते कॉल लगा रहा था आकाशवाणी के द्वारा।
5: अच्छा, कौन से प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है?
6: आज जैसे कि प्रचार में मैं सुना कि दिन में भी आता है सुबह 9:30 बजे।
5: बिल्कुल सही बात है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हमारा फोन इन प्रोग्राम जाता है आप सबकी ही फरमाइश पर। तो कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
6: जान तेरे नाम का, कल पहले जान हो जाएगा।
5: जान तेरे नाम का, चलिए हम आपको आपका गीत सुनवा देते हैं, आप एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को। नमस्ते, नमस्ते।

0: वहीं देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: मैडम राजकुमार चौहान, बारून जस्ट बोलना। मैडम
0: बारून से बात कर रहे हैं। राजकुमार जी, राजकुमार जी सबसे पहले बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: मैडम हिना पिक्चर का सुनना है।
0: हिना पिक्चर का, चलिए हम आपको गाना जरूर सुनवाएंगे। क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं प्रचार एडवर्टाइज बनाता हूँ, एडवर्टाइज की कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ, लाइट काउंटर बिल का काम करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत
1: ही प्रचार आता है स्वास्थ्य विभाग का दुकान का, तो मैं अपने कंप्यूटर से प्रचार की वो भी बनाता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है राजकुमार जी, आप इतना सारा काम करने के साथ समय निकाल लेते हैं हमारे आकाशवाणी अयोध्या के लिए।
1: मैडम हमारे सुबह 5:57 से लेकर 11:10 बजे तक जितने भी कार्यक्रम आते हैं
0: जी
1: तभी सुनता हूँ। मुझे पसंद ज्यादा युवाड़ी, ये तो पुराने अयोध्या हमारे आस पास की और किसानों के लिए जो कार्यक्रम आता है, मैडम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी, लाजवाब है मैडम।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आकाशवाणी अयोध्या के बहुत अच्छे प्रोग्राम, मतलब जितने भी प्रोग्राम है सारे सुनते हैं और खास प्रोग्राम को आपने बताया कि जो आपको काफी पसंद है। तो चलिए
1: युवाणी मुझे बहुत पसंद है।
0: चलिए
1: मैडम रेडियो माध्यम से कहना चाहता हूँ
0: जी
1: की इस समय आंधी तूफान कल आया हुआ था, अभी कभी भी आ सकता है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग आंधी तूफान के समय पर पेड़ के पास या कहीं ऐसी जगह न रहे जिससे उनके पर छनिकत आ सके। मतलब
0: बिल्कुल सही बात है, अगर बहुत तेज आंधी हो, अगर मकान बहुत पुराना हो, मकान से भी थोड़ी देर के लिए किनारे कहीं हट जाएं, ऐसा ना लगे कि मतलब कहीं ऐसी जगह पे हो जाए, सेफ जगह पे, कि कहीं पेड़ ना हो या फिर कहीं टूटी फूटी दीवारें जो होती हैं पुरानी वो भी कभी कभी गिर जाती हैं, तो उनसे दूर रहें। तो अपनी सुरक्षा तो हमें खुद ही करनी है।
1: इस समय घर से बाहर निकलना चाहिए तो 10 बजे के बीच में मत निकले 4 बजे तक, क्योंकि इतना तेज गर्मी होती है, धूप भी होता है, लोग लग जाता है तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है शरीर को, बहुत परेशानी होती है मेरे।
0: क्या बात है राजकुमार जी, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी। युवाणी का प्रोग्राम आप बहुत अच्छे से सुनते हैं। चलिए हमने आपकी फिल्म का गाना प्ले कर दिया है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: भाई हमारा तो साथ आपके ही साथ है। हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: मैं रितेश बोल रहा हूँ, राम मंदिर से।
0: रितेश जी राम मंदिर से बात कर रहे हैं, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मैम को अपनी पसंद का कोई भी सुना दीजिए।
0: अच्छा, अपनी पसंद का कोई भी सुना दे। रितेश आप आकाशवाणी अयोध्या के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी मैम जो यही सुनता हूँ और बस, और मतलब
0: चलिए अच्छी बात है,
1: समय मिलता है
0: तो सुनते हैं। रितेश जी कल बहुत तेज आंधी आई थी और
1: जी,
0: कैसा माहौल था वहाँ राम मंदिर के पास?
1: आंधी मैम आई थी को भाई, यहाँ पूरा वो हो गया था, अंधियार पूरा हो टाइप से हो गया था।
0: हाँ।
1: दिखाई नहीं दे रहा था और जो हवा चलने लगा हल्का फुल, जो हल्के सामान उड़ने लगा इससे।
0: बिल्कुल सही बात है, जो आंधी तूफान है वो अचानक से आ जा रहा है, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। जब भी मौसम को थोड़ा सा देखें कि जैसा कुछ ऐसा मौसम लग रहा है तो पहले ही सतर्क हो जाएं, है कि नहीं?
1: जी।
0: चलिए रितेश जी हम आपकी फिल्म का गाना सुनवा दे रहे हैं, अपनी पसंद का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान

0: तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। देखते हैं इसमें कौन से श्रोता हैं जो लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो हेलो, राधे राधे।
3: राधे राधे सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: कोटसराय
3: से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका?
4: दयाराम मिस्त्री, कोटसराय।
3: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
4: राजा रंग के।
3: क्या करते हैं?
4: मिस्त्रियाना करते हैं, राजगीर हैं, राजगीर।
3: अच्छा अच्छा, और प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं?
4: हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम पूरा दिन भर चला कर मोबाइल।
3: चलिए, आजकल तो बीच में कभी धूप बहुत तेज हो जाती है तो आपको तो कैसे मैनेज करते हैं? पानी वानी बराबर पीते हैं कि नहीं?
4: हाँ देखो, सुबह जो खाने में सलाद में खीरा खाते हैं, प्याज काटते हैं और नींबू।
3: बहुत अच्छी बात है।
4: नींबू का घोल बना के बोतल में भर लेते हैं।
3: क्या बात है, बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि
4: एक बार अंगूठा बांध लेते हैं मुड़े में,
3: इसके बाद काम पर अपने जुट जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि काम के साथ साथ आप अपना भी बहुत ध्यान रखते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी आपकी तरह अपना बहुत ख्याल रखें और हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा दें।
4: राधे राधे। हाँ सुनवा दीजिए।
3: राधे राधे सर।

0: दोस्तों, माँ से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं होता, माँ सर्वोपरि है। देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो।
1: हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना, देवकाली रोड, अयोध्या।
0: देवकाली से बात कर रहे हैं। अर्जुन जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे सर?
1: फिल्म है अंधा कानून मैडम, टाइटल सॉन्ग है, किशोर कुमार की आवाज है।
0: बहुत अच्छी बात है। ये गाना हम
1: अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पत्नी जी को ये गाना सुनाना चाहते हैं।
1: इतना अच्छा है मैडम कि हम क्या बताएं आपसे।
0: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुबह से ही रेडियो खुलती है, सुबह से खुलती है, 11 बजे रात तक हम लोग प्रोग्राम सुनते रहे।
0: बहुत खुशी होती है जब हमारे
1: मैडम
0: जी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता कहते हैं कि हमारा आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। चलिए, हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनाते हैं अपनी श्रीमती जी के साथ।
1: लक्ष्मी देवी सोनकर नाम ये गाना आप भेज कर
0: जी जी श्रीमती जी के साथ सुनिए ये गाना।
1: जी जी जी मैडम।

दोस्तों हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में कंट्रोल रूम से हमें तकनीकी सहयोग दे रहे थे अश्वनी शुक्ला जी। श्रोताओं इसी गीत के साथ हेलो अयोध्या कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रियंका को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को 101.9 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा

0: लेंगे।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास

0: घास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और

0: नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
3: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है।

0: दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल है। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी,
2: अभी और कितनी दूर जा?

0: थोड़ी दूर हो, वो देखो उस गड्ढे के पास
1: जी।
2: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बारा सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: हमें यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब। हर बात ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोंपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है। हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
2: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
2: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
2: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था। लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
2: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
2: जी,
1: पिता ने माहौल दिया। मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है। पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खान, कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठे
2: सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
2: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना। तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
2: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
2: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
2: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
2: शिकायत आती थी,
1: शिकायत के पास आती कि आज इसने ये क्या। और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
2: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
2: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जाते घर में।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
2: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत
2: रोज आ रही है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
2: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात। हाँ। पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
2: उसका जिक्र ना ही करें
1: तो
2: अच्छा।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता। और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
2: अरे
1: घर में वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो।
2: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके। बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच। फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। मतलब तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था। तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
2: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
2: बिल्कुल
1: की कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आपको अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे। और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
2: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं। और

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: नहीं, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निजी मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तब एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन
0: ऐसे
1: रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ज जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे इनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी,

0: फना। यूनुस इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा, अब नहीं, बहुत हो गया, है ना, ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी की,
0: तो फिर हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह।
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते फिर रहे थे हम लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ

0: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आपसे ये सुन रहे हैं।
1: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
0: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
1: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
0: जी जी,
1: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा, मतलब
0: जी जी बिल्कुल,
1: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
0: अच्छा खान पान था,
1: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
0: जी,
1: सब कुछ अच्छा था, बहुत जी, अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होमसिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहां फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
0: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहाँ आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
1: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
0: जी जी,
1: इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
0: जी
1: वो जयपुर में था
0: जी जी जी,
1: नाटक लिखना, कंपोज करना,
0: बिल्कुल
1: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था
0: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
1: पला बड़ा था, जानते थे। फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
0: जी,
1: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, अब म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा उस वक्त जयपुर में, और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
0: जी,
1: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
0: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना
0: जी जी,
1: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
0: वाह।
1: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
0: क्या बात है,
1: उसका किया।
0: वाह।
1: और इसके अलावा गीत गोविंद,
0: अरे गजब,
1: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी। यूनुस उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
0: बिल्कुल
1: जयदेव जी का
0: जी।
1: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
0: संस्कृत में,
1: संस्कृत में,
0: अरे बाप,
1: तो गाने संस्कृत में है
0: जी,
1: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है।
0: हाँ।
1: ये
0: तो बहुत मुश्किल काम है,
1: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया, समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रह उड़ीसा में
0: जी जी,
1: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो मैंने उसको बाकायदा एक फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत

0: के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है।
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे।
1: क्या शानदार बात।

0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: तो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल
0: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था, जरूरत से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये मैं करता
0: हूं। हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है
1: बिल्कुल।
0: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है
1: बिल्कुल, होती
0: है ना, जानते होंगे। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी।
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब ये होता नहीं है ये
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो 4 कंपोजर यहाँ स्टाफ में मौजूद है और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ,
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ हाँ,
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको भी पढ़ता था और गीत होता था, कोई गाता था, तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: इसको
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,

0: जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधन, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के

0: राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों, क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
1: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली,
1: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को

हम सुन रहे थे मनमस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है, सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से राम शंकर की आवाज में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों

0: के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

इसी लाइफ में, इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत ब्रोज अनजान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, यशुदास की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से अन्वेषा विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 12:23 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: स्वागत है आप सभी का अवधि लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में। और कार्यक्रम में पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेचन राम और साथियों की आवाज में।

दोस्तों, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग, और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्यारे प्यारे लोकगीत। और आइए अब सुनते हैं बब्बन निषाद व साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: दिखाई दे बना हो धीरे धीरे हम करा दिया तू
1: काई दे बना हो धीरे धीरे हम करा दिया तू काई दे बना हो धीरे।
2: दोस्तों कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको कुछ एक और लोकगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
4: हेलो
5: सुनो टेलीफोन नंबर,
6: माय नंबर इज
7: 7376804090।
3: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

की बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक

0: मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: अंतराल के बाद हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर आपके साथ, और आइए सुनते हैं बब्बन निषाद व साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अभी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के ठीक 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के फेसबुक फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं

0: चुनौतियों जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुना थे सखी, सुना थे हूँ कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
8: कुछ तुमने कहा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को प्रविता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों को पढ़ने का सिलसिला जो कि हमारे पास पहुंची है फेसबुक पेज पर। पहली फरमाइश हमारे पास आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा जी की। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं। आफ्ताब अंसारी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी जी की फरमाइश आई है। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय। हयात कॉलोनी बिहार से फैसल इमाम की फरमाइश आई है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश करते हैं। सुरेश गंगनेजा जलालाबाद वेस्ट से। मसूर हसन कुमार हेड़ा सहारनपुर से। नारायण लाल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजते हैं। मोहम्मद यासीन अनजान गिरिडीह झारखंड से। उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से फरमाइश भेजती हैं। नरेश मल्होत्रा नीटू खैल बाजार पानीपत से। जाकिर मंसूरी मुंगीसापुर से। कमल शाह ने नागपुर महाराष्ट्र से। दिलशाद हुसैन आज गढ़ उत्तर प्रदेश से फरमाइश करते हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं संग्राम फिल्म से ये गीत साधना सरगम की आवाज में। गीत है समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

दोस्तों आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हम ये दामिनी फिल्म का गीत, और शामिल करते हैं अपने कुछ दोस्तों के नाम। विष्णु टेलर दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से, वेद प्रकाश मिड्ढा नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश करते हैं, नीलू मेघ राजधानी जयपुर से, विजय सुरलकर बुड़वाला महाराष्ट्र से फरमाइश भेजते हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, मोहम्मद कली मंसारी गंज डुंडवारा से, प्रमोद कुमार साहू बोरसरा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं, कमलकांत गुप्ता पिपरिया कबीरधाम से, राहुल मतवार यवतमाल से, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से फरमाइश करते हैं, विनोद वांडलेकर रायपुर छत्तीसगढ़ से, फगुराम यादव संबलपुर कांकेर से फरमाइश भेजते हैं, बीआई धाकड़ उज्जैन मध्य प्रदेश से, जगमोहन प्रजापत लहोडडा बागपत से, दिलावर खान रघुवीर नगर से, और सुभाष गोडारा फाजिलिका पंजाब से। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं दामिनी फिल्म से ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज।

दोस्तों आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, जो कि हमारे श्रोताओं की फेसबुक फरमाइश पर आधारित होता है। तो आइए अपने कुछ और दोस्तों के नाम शामिल कर लेते हैं अपने इस अगले गीत में। रवि कुमार राहुल अंबाला हरियाणा से फरमाइश भेजते हैं। संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। सैयद यूनुस जलाना मराठवाड़ा से। विनोद कुमार यादव भागलपुर बिहार से फरमाइश करते हैं। शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से। रामचंद्र माखेजा छत्तीसगढ़ से। तुलसीदास चौक शाहदरा दिल्ली से। सुभाष चंद्र बजाज कालका से फरमाइश भेजते हैं। विक्रम मालवीय गुलवालोद आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं। दुर्गा राम साहू कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। बालकृष्ण नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से फरमाइश भेजते हैं। डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से। बबलेश पवार गांधी चौक वाड़मेर राजस्थान से। राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से फरमाइश कर रहे हैं। लाल बाबू दीवाना जेल रोड दिल्ली से फरमाइश भेजते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसा हरियाणा से फरमाइश करते हैं और सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से फरमाइश भेज रहे हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं उमराव जान फिल्म से ये प्यारा सा गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम। किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

दोस्तों अंतराल के बाद हाजिर हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा लेकर आपके साथ और पढ़ते हैं अपने कुछ और दोस्तों की फरमाइश को। दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से फरमाइश करते हैं। विनोद बरासा खोखरा वाली श्री गंगानगर से। नंदकिशोर घटे बीड शहर महाराष्ट्र से फरमाइश भेजते हैं। भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद हिंगोली महाराष्ट्र से। साहजी बोड़खे और चखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी की फरमाइश आई है। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमाकर रमेश कुमार पटेल नगर अलोड से फरमाइश करते हैं। ईश्वर मेहर भटूनी मंदसौर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं। जीवन विश्वकर्मा चाईबासा झारखंड से। राजेंद्र नागर बटिंडा रोड मंडी डबवाली से फरमाइश भेजते हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से फरमाइश कर रहे हैं। ताज अंसारी आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेज रहे हैं। लगान पंडरिया

छत्तीसगढ़ से राघव बघेल जी की फरमाइश आई है। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज जी की फरमाइश हमारे पास आई है, तो आप सभी को आइए सुनवाते हैं धर्मात्मा फिल्म से ये प्यारा सा गीत मुकेश कंचन और साथियों की आवाज़ में।

दोस्तों कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे नील कमल फिल्म से, जिसके लिए हमने शामिल की है अपने कुछ और दोस्तों की फरमाइश। श्याम सुंदर महेश्वरी फारबिसगंज बिहार से, माखन वर्मा अडार नादघाट छत्तीसगढ़ से, शकील अहमद इदरीसी बरेली यूपी से फरमाइश करते हैं, एम फारूक शेख गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेजते हैं, हल्के जयपाल यादव महोबा बुंदेलखंड यूपी से फरमाइश कर रहे हैं, माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, संतोष भाकरे देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेजते हैं, अशोक सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से फरमाइश करते हैं।

हैं बी कमल मजनू का टीला से, उत्तम सिंह जंगेल कोह का भिलाई से फरमाइश कर रहे हैं, मुकेश गौतम चंदौली रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं, सत्येंद्र चंसौलिया पंजौलिया जालौन से फरमाइश करते हैं, विनय मोहन जगाधारी यमुनानगर हरियाणा से फरमाइश कर रहे हैं, संदीप कुमार गोराया जालंधर से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, मोहम्मद रफीक पवार लक्कड़ बाजार खंडवा से फरमाइश भेजते हैं, रूपेश संघई परभड़ी महाराष्ट्र से, एम कमल कुरैशी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं, प्रवीण श्रीमाली खरगोन मध्य प्रदेश से और पंजा जी नाहकर नरविल महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं नीलकमल फिल्म से ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
5: दोस्तों, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले छोटी मगर महत्वपूर्ण बात आपसे कर लेते हैं। दोस्तों, इस समय मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कभी बारिश हो रही है तो कभी आंधी तो कभी गर्मी। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अग्निकांड की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं, जिसमें थोड़ी सी चूक के कारण लोगों के खेतों

और घरों में आग लग जाती है। आग लगने के कारण जनधन की क्षति तो होती है और इससे जीव जंतु भी बहुत प्रभावित होते हैं। कुछ छोटी सी सावधानियों को अपनाकर इनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे कि घरों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुरानी वायरिंग को समय रहते बदल दें, एसी को लगातार कई घंटों तक न चलाएं, बीच बीच में कुछ घंटों के लिए बंद कर दें, खाना बनाते समय पानी से भरी बाल्टी हमेशा अपने साथ रखें, मोमबत्ती व अंगीठी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें, खेतों से अपनी फसल को काट कर सुरक्षित स्थान पर रखें, अपने क्षेत्र के अग्निशमन विभाग का नंबर साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन विभाग से संपर्क किया जा सके, जिससे कि अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें, बिस्तर पर धूम्रपान ना करें, खड़ी फसल के किनारे खाना ना बनाएं और जब तक सूखी फसल खड़ी हो तब तक खेतों के आसपास खरपतवार ना जलाएं, रसोई घर में अनावश्यक ज्वलन पदार्थ ना रखें, खेतों में बीड़ी सिगरेट आदि को जलता हुआ ना फेंकें, चूल्हे की चिंगारी व गरम राख कूड़े के ढेर को खुले में कभी भी ना फेंकें। जी हाँ, इन कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और अब शामिल करते हैं अपने कुछ और दोस्तों की फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम में। रिजवान खान छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजते हैं। सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से फरमाइश कर रहे हैं। पुखराज बड़गुजर नोखा राजस्थान से। शमशुल कमर राहीगंज डुंडवारा से। उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से फरमाइश भेजते हैं। विनायक बेड़े आकोट से। हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। बिजेंद्र के जयजान करनाल हरियाणा से फरमाइश भेजते हैं। रमेश कंबोज करनाल हरियाणा से। विनोद मूड़त उज्जैन बोरखेड़ा से। रमेश चौहान जोधपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं। के आर साहू देवरी भाटापारा से। पटवा जी ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजते हैं। महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से। मुकेश गोस्वामी उच्च भट्टी बिरासपुर छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं। ज्ञानभूषण शर्मा रावर करनाल से। मोहम्मद फरमान मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से। और अंकुश अरोरा खुर्जा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं शर्मिली फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म से, और फरमाइश हमारे पास आई है बालक राम वर्मा बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अशोक श्याम कुंवर भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से, जख्मी कलीम गंज डुंडवारा से, झग्गर राम साहू राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं, शंभू दयाल जाखोत से, सोमदत्त नाभा पटियाला पंजाब से, राजू माठे खामगांव महाराष्ट्र से, गोविंद वैष्णव लसूड़िया पाता राजगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश करते हैं, विनोद लखन पाल रावण जिला करनाल से, कुंवर कृपाल सिंह गुलबालोद मध्य प्रदेश से, प्रेम सिंह बारवाल बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश करते हैं, राजपाल मलोट पंजाब से, मुकेश कश्यप दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, फहीम मंसूरी बांदा यूपी से, एस के अलबक्स तेलंगाना निजामाबाद से फरमाइश कर रहे हैं, सुरेश जायसवाल जमानिया जिला गाजी से फरमाइश करते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और कार्यक्रम में हम आखिरी गीत सुनवाएंगे आपको नगीना फिल्म से आज का, और शामिल करते हैं अपने कुछ और दोस्तों के नाम। नजमुल होड़ा जावेद झारखंड से, ओम बागड़िया फाजलिका से, अब्दुल गफ्फार संजय कॉलोनी खंडवा से फरमाइश करते हैं, राम कुमार रेवार सार्दुल शहर राजस्थान से, दीपेश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, सतीश अरनेजा चंडीगढ़ से फरमाइश भेजते हैं, अशोक वर्मा खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद इंतजार भोजपुर तगा सहारनपुर से फरमाइश करते हैं, बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, चंद्रकांत साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से, वलीउल्लाह अंसारी डुमराव से, किशोर कुमार सनवाले दरबार कॉलोनी सनावत से, धीरज भाई राबड़ी गुजरात पाटन से, सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, टी डी मल्होत्रा मोहाली चंडीगढ़ से, गगनदीप थांदी टोरोवाल नवाशहर पंजाब से फरमाइश भेजते हैं, जॉन डी कैस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, बनवारी जयपाल श्रीगंगानगर से, रविन्द्र दास किशनगंज बिहार से, नंद कुमार ठाकुर चरौदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद यासीन गंज डुंडवारा से, अनिल वर्मा कुरावली से, सुदर्शन साहब पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से, सुरेंद्र खुराना मुल्तान नगर दिल्ली से, भागवत चौबे लाडला जी मध्य प्रदेश से, दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप और अशोक वर्मा खरगोन उसनावद मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
0: दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीतांजलि में, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नुसरत फतेह अली खान के गाए इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर, जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा न कोई।
2: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी, अयोध्या।

नौस्तुति गीत के साथ गीतांजलि कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य

0: और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराखची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक

0: बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे

0: तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने

0: बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
5: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
4: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
5: फोन नंबर 9161877347।
6: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
7: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
6: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
7: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
6: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
7: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
8: सभी श्रोता बहनों को बबली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आजकल के बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे समय में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो वातावरण है वो हरा भरा रहे। मैंने पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार है, ये न केवल हमें शुद्ध वायु देते हैं बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध भी बनाते हैं। मैंने पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियां, लकड़ी, औषधियां और छाया तो देते ही हैं, साथ ही साथ पक्षियों और जीव जंतुओं का जीवन भी पेड़ों पर ही निर्भर करता है। मैंने यदि पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो प्रकृति का तापमान भी बढ़ेगा और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। तो मैंने आजकल शहरों में विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो बहनों, आजकल के समय में महिलाएं जो हैं, ये घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लगातार काम के दबाव के कारण उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, कार्यालय का तनाव और समय की कमी के कारण कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। पर्याप्त नींद ना लेना, समय पर भोजन ना करना, पौष्टिक आहार की कमी और मानसिक तनाव उनके स्वास्थ्य को कमजोर बना देते हैं। तो बहनों, ऐसे में जरूरी है कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर समय की कमी है तो सुबह का जो नाश्ता होता है, ऑफिस जाने से पहले या कोई भी काम पर जाने से पहले नाश्ता जरूर करें। अगर नाश्ता नहीं कर पा रही हैं तो आप उसे लंच बॉक्स में साथ ले जाएं, या तो रास्ते में कर लें या फिर ऑफिस पहुंच के कर लें। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो आप अपने पर्स में फलों को काट कर रख सकती हैं, जो भी मौसमी फल हैं उन्हें रखें। और अगर आप स्प्राउट को पहले से तैयार करके रात में ही डिब्बे में भर के फ्रिज में रख लें, ताकि सुबह में आप तुरंत उसे पर्स में रख सकें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नाश्ता कभी भी स्किप ना करें। दोपहर का खाना चाहे स्किप हो जाए, लेकिन दोपहर सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पूरे दिन ऊर्जा देता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली या भुजा हुआ चना भी आप अपने पर्स में रख सकती हैं, क्योंकि ये पौष्टिक भी होते हैं और आसानी से पर्स में रखे भी जा सकते हैं, और जब भी आपको भूख लगे तो आप इसे आसानी से खा भी सकती हैं। मैंने बातें तो और होती रहेंगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: बहनों, आज है दिन गुरुवार और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं गीतों भरी कहानी। और आज जो कहानी हम लेकर आए हैं उसका शीर्षक है माँ की ममता। जी हाँ बहनों, माँ की ममता। मुंबई जैसे भागते दौड़ते शहर, चमचमाती रोशनी और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटी सी झोपड़पट्टी में मीना अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। मीना लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। सुबह जब पूरा शहर नींद से जाग रहा होता, लोकल ट्रेनें दौड़ रही होती और सड़कों पर गाड़ियों का शोर बंद हो रहा होता, तब मीना बड़े प्यार से अपने बेटे आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाती और साथ ही ये गीत गुनगुनाती कुछ इस तरह।

चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ये गीत सुनकर आरव भी मुस्कुरा देता। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मीना का बेटा ही उसकी दुनिया था। वह अपनी जरूरतों को भूलकर आरव के सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी। मीना खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के टिफिन में अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम करती। शहर की चमक दमक उसके बेटे से घर तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन माँ की ममता ने उस घर को स्वर्ग बना दिया था। समय के साथ आरव बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज जाने लगा, अब उसे अपनी माँ की मेहनत छोटी लगने लगी थी। बड़े शहर के अमीर दोस्तों के बीच उसे अपनी माँ का साधारण रहन सहन शर्मिंदगी देने लगा। एक दिन कॉलेज के वार्षिक समारोह में मीना साधारण सी साड़ी पहनकर बेटे को सरप्राइज देने पहुंची, लेकिन बेटे ने उसको बिल्कुल उसके अच्छा नहीं लगा। लेकिन आरव ने अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होते हुए अपनी माँ से गुस्से में ये कहा कि वह बिना बताए कभी कॉलेज ना आया करे। माँ को ये बात सुनते ही बहुत बुरा लगा। ये बात सुनते ही मीना का दिल जैसे टूट गया हो, फिर भी उसने बेटे की खुशी के लिए चुप रहना बेहतर समझा। घर लौटते समय सड़क के किनारे एक दुकान पर एक गीत बज रहा था। उसके दर्द को वो गीत और भी गहरा कर दे रहा था, और वह गीत था

माँ मन ही मन भगवान से यही दुआ करती रही कि उसका बेटा खुश रहे, चाहे वह उससे दूर ही क्यों ना चला जाए। मैंने उस समय यूं ही बीतता गया और कुछ वर्षों बाद आरव को विदेश में बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह माँ को छोड़कर विदेश चला गया। बड़े शहर की ऊंची इमारतों में काम करते हुए उसने खूब पैसा कमाया।

ऊंची इमारतों में काम करते हुए उसने खूब पैसा कमाया। पैसा, नाम, शोहरत सब उसके पास था, लेकिन माँ से दूरी बढ़ती गई। मीना अब काम करती करती थक चुकी थी। मीना की उम्र और बीमारी से मीना को कमजोर बना दिया था। एक दिन बेटे आरव को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है। वह तुरंत वापस अपने शहर लौटा। अस्पताल में माँ को कमजोर हालत में देखकर उसकी आंखें भर आई। आरव अपनी माँ के पैरों को पकड़कर सिसक सिसक कर रोने लगा और यही सोचने लगा,

आरव माँ के पैरों पर गिर कर रो ही रहा था कि माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। माँ का ट्रीटमेंट चलता रहा। कुछ महीनों बाद मीना पूरी तरह से ठीक हो गई। आरव ने भी विदेश की नौकरी छोड़ दी और अपने शहर में ही एक बड़ा बिजनेस शुरू किया ताकि वह अपनी माँ के साथ रह सके। कुछ समय बाद आरव ने अपनी माँ के नाम से गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहाँ हर बच्चे को माँ के प्यार और शिक्षा का महत्व बताया जा सके। स्कूल के उद्घाटन के दिन आरव अपनी माँ का हाथ पकड़कर मंच पर लाया। मंच पर आते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और गीत बजने लगा।

किसी दौलत से बड़ी होती है, क्योंकि दुनिया बदल सकती है लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। इसलिए माँ की ममता से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लम्हों पर उसके कभी दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। इसी के साथ दीजिए बबली को इजाजत। नमस्कार।

बहने सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी और आज भी हेल्दी नमस्कार।

0: ये
1: तो आज भी वजह बताइए
0: भाई, एक बार जब भी आते ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
1: हाँ।
0: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
0: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियाँ अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
0: हैं। जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
0: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
0: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लेकर बताएं।
0: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
0: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
0: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
0: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहाँ पर हम KG1 KG2 के जो पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
1: भाई जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
0: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहां, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो

0: हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरीबाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई, और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहाँ जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है, और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय की पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी, जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप

0: उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन ले।
1: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं। सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती भाई। सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी,
0: दिल से जुड़ जाते थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो।

0: की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के जो कह दे वही होगा।
1: ओए जम के

कौन सलामत, सात सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: संस्कृत भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं जी। तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक

0: अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहाँ इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहाँ कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सुना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं, इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो वही चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईस पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया कार है या महंगी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत

0: सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती है ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना, अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको रखनी या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है अरे सिर्फ 2000 या 3000 की किश्त है तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली
0: और वो जो 20 हजार की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हजार या 35 हजार तक की वो पड़ जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना जो एक प्रलोभन होता है उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं, हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं, मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं, किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है, जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो

0: इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं। और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है, और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो

सीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं। शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खानपान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध

0: शामिल है और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
0: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे, नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में वहाँ रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे आप अंडर आर्म्स में ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ये है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: फूल रही मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविता?

0: कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं जो मुक्त छंद की हैं, हम उसको लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 2 मिनट का मौन है। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें, आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।

0: आयुष
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहंदी, और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा से गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हो, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। ये जो चिलमन है

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा, और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं
1: जी? मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विद भारती जी का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, बीच फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अलिफ तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अजी बेज

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी,
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो दिनों पहले यहां का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप पे।

0: अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए, क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा, तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण, और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी, गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली, तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में?
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सेपन दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी। और

0: शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
1: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
1: तो चलिए अब पहुँच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: बहुत परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक।

0: गया, आज बंद है।
1: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
0: जी जी।
1: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
0: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
1: जी,
0: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
1: जी,
0: लग जा गले
1: जी,
0: हसी रात फिर हो न हो।

0: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
1: जी,
0: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
1: जी,
0: लग जा गले
1: जी,
0: हसी रात फिर हो न हो,
1: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं, अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों ना हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 28670288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला विंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं एहसासों से भी बनते हैं, तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्रकृत विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। शाम के 5 बजे हैं और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज युवा संवाद।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: कल्पना कीजिए साथियों, सुबह हो लेकिन पक्षियों की आवाज ना हो, बारिश हो लेकिन मिट्टी की खुशबू ना आए, नदियां हो लेकिन साफ पानी ना हो, क्या ऐसी दुनिया में कोई स्वस्थ रह पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त जीनत। आज है दिन गुरुवार, तो आप सभी को याद ही होगा कि आज होता है लाइव फोनिंग सेगमेंट युवा संवाद, जहां दिए गए विषय पर आप साझा करते हैं हमारे साथ अपने विचार। डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090 यानी 7376804090। आज के युवा संवाद का हमारा विषय है साथियों, कैसे बचाएं पर्यावरण को। मित्रों, लगातार बढ़ता प्रदूषण, कटते जंगल, गर्म होती धरती और पानी की कमी, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि प्रकृति की चेतावनी है कि अगर आज हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बदलाव की शुरुआत हम छोटे छोटे प्रयासों से कर सकते हैं। और आइए देखें, अपनी बात साझा करने के लिए हमारे कॉलर कौन जुड़ चुके हैं, इनसे कहते हैं हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
2: नमस्कार, अपना नाम बताइए। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से किसने कॉल लगाई है, अपना नाम पुनः बताएं।
3: सतीश।
2: सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में।
3: जी जी, आपका मैं शुभ नाम नहीं जान पाया, आपके से मेरी बात हो रही है।
2: चलिए, जीनत से आपकी बात हो रही है, और बताइए कैसे हैं आप, बढ़िया हैं?
3: अच्छा जीनत, तो मैंने अच्छा आपकी फेसबुक आईडी पे मैंने आपको देखा था जी।
2: आज का हमारा विषय है कि कैसे बचाएं पर्यावरण को। आप बताइए, आप पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, लगाया है आपने कभी अपने जीवन में पेड़ पौधे?
3: हाँ, मैं

0: अभी तो पेड़ पौधे लगाया है, अभी तो गर्मी चल रही है, तो गर्मी में एक जैसे जैसे तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पानी देना चाहिए,
1: पेड़ पौधे लगाना चाहिए पर्यावरण को, क्योंकि गर्मियाँ और ज्यादा गर्म होती चली जा रही हैं।
0: हाँ, गर्मियाँ होती जा रही हैं और ये काटना नहीं चाहिए, अभी तो खड़ीने ककड़ी है, खीरा है, इनको सेवन करना चाहिए गर्मी के मौसम में, ज्यादा ज्यादा पानी पीना चाहिए,
1: ज्यादा ज्यादा पानी पीना, और पानी को भी संरक्षित करना चाहिए, पानी भी दूषित हो रहा है, पर्यावरण को हमें संरक्षण करना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए।
0: चलिए, पानी देना टाइम से, और आप लोग पानी ये जैसे अभी तो नींबू पानी पीना चाहिए।
1: बिल्कुल सतीश जी, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आप दोबारा कॉल जरूर कीजिए करेंगे। मित्रों, चल रहा है युवा संवाद और आज का हमारा युवा संवाद का विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। आप ही बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा, डायल कर 73 76 80 40 90। और आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम, मैं अनु पांडे गोंडा से।
1: अनु जी गोंडा से बात कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा संवाद में, कैसी हैं अनु?
2: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस आप बताइए आप कैसे हो?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपकी बातों से और अच्छे होने वाले हैं।
2: यस मैम,
1: आज आपने युवा संवाद में कॉल लगाई है, आज का हमारा विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण। तो पेड़ पौधे आपने कभी लगाए हैं?
2: मैम लगाए ही नहीं, इतने पेड़ पौधे अपने आसपास लगा रखे, और मैंने छाया वाले पेड़ पौधे ऑक्सीजन वाले तो लगाए ही है, उनके साथ फलों वाले भी लगाए जिसमें फल भी आने लगे और हम खा भी रहे हैं।
1: अरे वाह, तो कौन कौन से फल लगे हुए हैं?
2: जैसे अमरूद हो गया, अमरक हो गया, आम है।
1: तो बड़ी जगह चाहिए होगी इनके लिए, है ना?
2: हाँ मैम, गाँव में रहते है ना, मतलब है तो ऐसे थोड़ा मार्केट तो उसके पास नहीं, फिर भी मतलब थोड़ा सा अंदर है, तो इसलिए जगह अपने पास बहुत ढेर सारी है।
1: चलिए, आपने तो मतलब बचपन की याद दिला दी कि मतलब बगिया में इतने सारे पेड़ पौधे हम देखते थे।
2: हाँ, और मैम मुझे ना फूलों की बहुत शौकीन है, तो मैंने एक छोटा सा गार्डन भी बना के रखा है, तरह तरह के फूल भी लगाए हैं।
1: अच्छा, तो और लोग जो आपको देखते होंगे वो भी पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रेरित होते होंगे ना, आपकी सहेलियां हो गई या फिर जो भी आपके घर में आता हो देखता हो कि अच्छा इनकी इतनी बगिया है, इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आपने अपने स्तर पे कभी कुछ लोगों को प्रेरित किया है?
2: हाँ मैम, मेरे आसपास के लोग मुझे देख कर प्रेरित होते हैं और उनको ये भी प्रेरणा से मिलती है कि पेड़ पौधों को एक बच्चों की तरह पालना पड़ता है, तब जाके सही तैयार होते हैं, इसलिए सिर्फ लगा दो।
1: बिल्कुल, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हम पेड़ पौधे जो हैं उन्हें बचा कर रखें।
2: हाँ, लगाए भी और बचाए भी, और मैम जब मतलब पेड़ पौधे अपने लगाए हुए तैयार हो जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब इनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो जैसे एक छोटे से बच्चे की जब देखभाल करनी पड़ती है, वैसे इन पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है।
1: ये बात बिल्कुल आपने सही बताई है हमें कि हमें उन्हें अपने बच्चों छोटे बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती है।
2: और मैम हमारे यहाँ खजूर भी लगी है, और खजूर कितनी देखभाल करती है कि क्या बताए, इसमें फल भी आया है और मैं सुबह शाम तीनों टाइम उसके फल को ही देखती रहती हूँ।
1: चलिए, सिर्फ देखिए नहीं, उन्हें खा भी लिया करिए निकाल कर।
2: अभी तैयार नहीं हुआ है ना।
1: अच्छा,
2: देख रही हूँ कि ये तैयार कब होगा, फिर हम लोग खाएंगे।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने।
2: मैम हमको ना पानी भी कम से कम यूज कर बर्बाद करना चाहिए, जिससे हम जो सब्जियां धो रहे हैं, किचन में पानी यूज कर रहे हैं, उस पानी को हमें पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। हमको पॉलीथीन भी कम से कम यूज करनी चाहिए, जो भी यूज कर रहे हैं उसको एक जगह पे रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, बिखरा के नहीं रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हमारे पर्यावरण का ये हिस्सा है और पानी को बचाना भी बहुत ही जरूरी है।
2: हाँ
1: चलिए अनु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें आप कुछ संदेश देना चाहेंगी पर्यावरण को बचाने के लिए?
2: मैम मैं यही संदेश देना चाहूंगी, पानी वेस्ट ना करें, यूज ही पॉलीथीन ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि ना यूज करें, पेड़ पौधे लगाए ही नहीं, सिर्फ उनका देखभाल भी करें और उनकी हमेशा देखभाल करते रहे और हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, लाइट वाइट दिया जिससे तो फिजूल में ना यूज करें,
1: बिजली की भी बचत करें,
2: पंखा जरूरत है तभी ऑन करें, जब वहाँ है नहीं है तो ना ऑन करें, लाइट है तो हमेशा ना ऑन रखिए कि हमेशा ऑन रखिए, जब जरूरत हो तभी ऑन करें वरना बंद।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई अनु, छोटे छोटे ये हमारे बदलाव, हाँ हाँ बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम हमारे बड़े बदलाव की ओर हमें ले जा सकते हैं। चलिए अनु, आपसे बात कर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और दोबारा कॉल आप जरूर कीजिएगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फर्स्ट बार आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा।

0: हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जब सुनती हूँ बहुत खुश होती हूँ।
0: आप जैसे कॉलर मिल जाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, हमें दूसरों को भी मौका देना है ना अनु जी। तो इसलिए अब हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं, आप दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दोस्त अनु गोंडा से, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। युवा संवाद चल रहा है और आज का हमारा विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर। हेलो
2: हेलो,
0: अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: दीदी, मैं प्रीशा श्रीवास्तव बोल रही हूँ।
0: प्रीशा श्रीवास्तव,
2: अपेक्षा अपेक्षा
0: अपेक्षा श्रीवास्तव, कहाँ से बात कर रही हैं अपेक्षा जी?
2: अयोध्या से फैजाबाद।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका अपेक्षा, क्या करती हो आप?
2: दीदी, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अरे बहुत छोटी हो आप तो। और बताइए,
2: और सब ठीक है?
0: सब ठीक है। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें बताइए, आप पेड़ पौधे लगाती हैं घर में? गमले वगैरह लगे हैं आपके?
2: हाँ।
0: कौन कौन से गमले लगे हुए हैं पौधे उनमें?
2: फूलों के लगे हैं, तुलसी जी के लगे हैं।
0: तुलसी जी के लगे हुए हैं, पूजा भी करती होंगी तुलसी की?
2: हाँ।
0: चलिए और बताइए, पानी वगैरह आप बचाती हैं? कभी नल खुला दिखे तो आप उसे बंद कर देती हो, फैन ऑन करके रूम ना छोड़ती हो, बंद कर देती हो पंखा, ये सब करती हैं कि नहीं अपेक्षा?
2: हाँ।
0: अच्छा अपेक्षा, और बताइए और क्या क्या करती हैं आप?
2: और मैं पेड़ों को पानी देती हूँ, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, हाँ वो तो हमें पता चला, आप 6th क्लास में पढ़ती हो, आप बहुत छोटी हो अभी तो। बड़े होकर अपेक्षा को क्या बनना है?
2: IAS।
0: अरे वाह, IAS बनना है हमारी अपेक्षा को, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अपेक्षा हमें कुछ कहना चाहेंगी जो आपको सुन रहे हैं?
2: हाँ।
0: क्या कहना चाहेंगी?
2: हमें जंगलों को कटने से बचाना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
0: पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत प्यारी बात अपेक्षा आपने हमसे की, और आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हमें कॉल जरूर करिएगा। थैंक यू। तो ये बड़ी ही प्यारी सी बच्ची थी दोस्तों, 6th क्लास में पढ़ती थी अपेक्षा, जिसने इतनी प्यारी बातें हमें बताई। और आइए देखें अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
3: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: शिमला से किसने कॉल लगाई है?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, आपका जाना पहचाना।
0: अरे राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं?
3: जी जी जी, आज बढ़िया है। आज थोड़ा लेट हो गया था और थोड़ा रेडियो भी थोड़ा लेट ऑन किया था, तो
0: चलिए आप लेट हो गया, कोई बात नहीं। हम आपको आज का टॉपिक बता देते हैं, आज है कैसे बचाएं पर्यावरण को, ये हमारा विषय। तो पेड़ पौधे तो आपकी तरफ बहुत हैं, आप बागवानी वगैरह भी करते हैं, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, ध्यान आ रहा है, आप हमारे नियमित श्रोता भी हैं।
3: जी जी जी जी जी जी, जो आपने जो पर्यावरण की बात की, तो हमने बागवान के जो है पेड़ लगाए है, और हम सेब सेब की जो हमारे बागवान, तो हम उसकी हम लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पर्यावरण को कैसे बचाए, ये हमारा टॉपिक जो है इस तरह से है कि
0: आप अपने स्तर पे क्या
3: बताना चाहते हैं, कि सबसे बड़ी बात है पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए,
0: पेड़ लगाए, और भी कई काम हम कर सकते हैं,
3: और भी काम कर सकते। सिर्फ पेड़ लगाना नहीं कि आप चलो आपने पेड़ लगा लिया, लेकिन पेड़ लगाने के अलावा
0: हम प्लास्टिक को कम यूज कर सकते हैं,
3: और पर्यावरण को बचाना,
0: कचरे कम फैलाएं, प्लास्टिक का यूज हम कम करें, उसकी जगह हम कपड़े के थैले यूज करें, प्लास्टिक के बैग्स ना यूज करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं,
3: पानी को बिजली बचाएं, और सबसे बड़ी बात है अगर आप कहीं बाजार जाते हैं तो आप अपने घर से जूट का
0: थैला लेकर जाएं,
3: कपड़े का थैला लेके जाए। तो मैं अपने एक बार मैंने आपसे बात की थी, जब हम जाते हैं, जब कहीं भी जाते हैं, तो हमारे पास जो है हम अपना ही बैग हम अपने घर से ले जाते हैं, हम कभी प्लास्टिक का यूज नहीं करते। तो इसलिए सभी को अपने घर से जो है झोला लेके जाना चाहिए, और पानी को जितना हो सके क्या उतना चाहे, और
0: बचाना चाहिए, व्यर्थ में पानी को नहीं बहाना चाहिए, इसी तरह से बिजली भी हमें बचानी चाहिए। छोटे छोटे ये प्रयास हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और बड़ा योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने में। राकेश जी, हमेशा आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगता है और आप अपने स्तर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे श्रोताजन आपको सुनते हैं।

0: आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, चल रहा है युवा संवाद और आज का हमारा विषय है पर्यावरण को कैसे बचाएं। लगातार बढ़ता प्रदूषण, कटते जंगल, गर्म होती धरती और पानी की कमी। आइए देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्ते, चांदनी बोल रही हूँ, गोंडा से।
0: चांदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, गोंडा से आपने कॉल किया है, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। युवा संवाद में आज का हमारा विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। चांदनी जी, पेड़ पौधे लगाए हैं आपने कभी?
2: मैम, हम तो अपने जीवन मतलब अभी तक इतने पेड़ पौधे लगा चुके हैं, हम गिन नहीं पाएंगे कितने पौधे लगाए।
0: अरे वाह चांदनी जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मतलब लोग गिन गिन के लगाने को बोलते हैं, पर ये काम आपने बहुत बढ़िया किया है कि आपको याद नहीं, आप गिन नहीं पाएंगे।
2: सबसे ज्यादा हमने फूल लगाए हैं।
0: फूल मतलब गमले वाले वैसे पौधे?
2: नहीं, गमले वाला नहीं, वो ऐसे फूल लगाए हैं जो मिट्टी में लगते हैं जमीन पर।
0: बहुत सुंदर, फिर आगे चलकर वो पौधे हुए होंगे, है ना?
2: हम खरीद के लाते भी है, अगर कहीं पर दिख जाते हैं तो वहाँ से हम उसके मतलब डोंग बांध के लाते लगा देते हैं।
0: अच्छा, तो चांदनी जी हमें ये बताइए कि जैसे पर्यावरण को बचाने का विषय है आज का हमारा, तो घर में हम ऐसी कौन कौन सी आदतें अपना सकते हैं जिनसे हमारा पर्यावरण जो है वो बचे, संरक्षित हो, कुछ ऐसे हमें उपाय बताइए।
2: जैसे हमें घर में ऐसे बहुत सी चीजें हम करते हैं, जैसे घर में कोई सब्जी धुलते हैं या फिर चावल का पानी होगा वो सब इकट्ठा करके रख लें, वो अगर हम पानी पौधे में डाल देंगे तो उससे मतलब पानी भी बच जाएगा और पौधों को भी पानी मिल जाएगा।
0: बहुत सही बात आपने बताई चांदनी, और कुछ जो आप बताना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
2: हम ये कहना चाहते हैं जैसे हम अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं, तो अगर ऐसा हम रोज नहीं लगा सकते एक पौधे, तो अगर हम अपने जन्मदिन पर एक पौधे लगाए रहेंगे तो हमारी पहचान भी बनी रहेगी
0: और साथ साथ हमारे बड़ा होता रहेगा और दुनिया में अपना योगदान भी देता रहेगा। चांदनी जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई और कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, पौधों के बीच में बचपन से आज तक पले बढ़े हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग तो अक्सर पेड़ पौधों से दूर ही हो जाते हैं। तो चांदनी जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत।
2: अगर हम पौधे काटते हैं, अगर हम एक पौधे काटते हैं तो उसकी जगह हमें दो पौधे लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। चलिए चांदनी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, अगर हम उसे देखेंगे नहीं तो बड़ा तो होगा नहीं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। तो और कुछ कहना है आपको?
2: हम कहना चाहते हैं हमें पौधे जरूर चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें पौधे जितने कट रहे हैं उसके हानिकारक परिणाम भी देखने को मिल रहा है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये सब पौधे के कारण ही हो रहा है, पर्यावरण जो हम प्रदूषित कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो चांदनी जी, हमें उम्मीद है कि आपको सुनने वाले सभी लोग आपसे प्रेरणा जरूर लेंगे और आपकी बातों को जरूर वो ध्यान में रखेंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चल रहा है युवा संवाद और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240042 और 7800037222।
4: और भाई साहब, क्या हाल है
5: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
4: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
5: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
6: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोता साथियों का युवाणी कार्यक्रम में, जहां आज युवा संवाद में हमारा विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। दोस्तों अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या विकास और पर्यावरण

0: एक साथ चल सकता है कि नहीं। तो आइए इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैम नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार भारती, ग्राम मंजरिया पोस्टी सिलाही मनकापुर गोंडा से बात कर रहे हैं।
0: संदीप जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का विषय आपको पता है?
1: हाँ जी मैम, पर्यावरण कैसे बचाएं।
0: बिल्कुल, तो आप बताइए कि आपने अपने स्तर पर आज तक ऐसा क्या प्रयास किया है पर्यावरण को बचाने का?
1: सर मैम, मैंने सब प्रयास किया है मैम। मैं तो पेड़ पौधे से बहुत प्यार करता हूँ मैम। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ तो लीची का पेड़, फल वाला आम का पेड़ जैसे हो गया, और हमारे यहाँ नीम का पेड़ अगर अपने आप जम जाएगा तो उसे हम लोग पानी देते रहेंगे। एक मेरे यहाँ नीम का पेड़ था, छोटा था, उसे अब आज तो पेड़ बन गया है पूरा, बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। और आने वाले समय में विशाल का ही पेड़ बन जाएगा।
0: चलिए, उम्मीद है कि आप उसकी देखभाल करेंगे और वो विशाल का पेड़ बने, ताकि आगे वाली आने वाली पीढ़ी को वो अच्छे से छाया प्रदान कर सके और दातून दे सके, क्योंकि नीम के पेड़ से ही तो दातून लोग करते हैं।
1: यस मैम, नीम के पेड़ से दातून और थोड़ा फुल्सी हो गया मैम, उसकी पत्तियां यूज कर लेते हैं।
0: देखिए कितने फायदे हैं पेड़ पौधे लगाने के। अच्छा, हमारा विषय है
1: और शुद्ध हवा भी देता है मैम, ऑक्सीजन भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, तो हमारा विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को।
1: पेड़ लगाना है मैम, क्योंकि आजकल इतना पेड़ कट रहा है मैम, बहुत ज्यादा पेड़ कट रहा है, सब घर ही बना रहे हैं, पेड़ कट ही रहे हैं मैम, जंगल खत्म हो रहे हैं। अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण हमारा खराब ही होगा मैम।
0: हाँ, पर्यावरण हमारा दूषित होता चला जाएगा, क्योंकि यही शुद्ध वायु भी हमें प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ऐसी भी चीजें हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक हैं संदीप जी, जैसे पानी की बर्बादी को रोकना है ना, और बिजली को बचाना ये भी तो जरूरी है ना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, तो इनको इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैम पानी बचाने के लिए मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ कि कम से कम पानी यूज हो। मैम अपने परिवार में हर एक सदस्य को मैं समझाता रहता हूँ कि मैम पानी कितनी कीमत की चीज है, क्योंकि मैम मेरी मम्मी मोटर वोटर चला के कपड़ा धोने लगती है, तो मैं इनको समझाता रहता हूँ कि मतलब बहुत कम ही पानी यूज करो।
0: बिल्कुल,
1: मेरे दादाजी है वो तो सुबह उठ के पानी, मतलब मेरा मैदान का इतना बड़ा द्वारा है मैम, तो उसे पानी अड़ोड़ने लगेंगे। मैं उनको बोलता ही रहता हूँ कि पानी मत फेंको।
0: बिल्कुल, और वहाँ पे हम ऐसा पानी डाल सकते हैं ना जो कि वेस्टेज हो या फिर साफ हो जाए, पर उससे जमीन ये नहीं कि मक्खियाँ लगने लगें। तो इस तरह से हम अपने बड़ों को भी समझा सकते हैं, अपने छोटों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि काम तो फिर हमें ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भविष्य ये हमारा है।
1: पानी कोई बर्बाद बात करता है, मैं तो अवश्य समझाता हूँ। मैं यहाँ बाहर रहूँ या चाहे जहाँ मैं हूँ, अगर कोई पानी बर्बाद करता है तो मैं उसे जरूर समझाऊंगा।
0: ठीक उसी तरह से बिजली बचाने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए।
1: हाँ मैं बिजली का बचाव भी मैं करता हूँ, अगर फालतू पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, तो मैं उसे ऑफ कर देता हूँ मैम।
0: चलिए संदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: बताता हूँ मैम,
0: बताइए।
1: फैमिली वालों को बताता हूँ कि लाइट ऑफ कर दीजिए, फालतू मत जलने दीजिए पंखा। मम्मी मेरी ऐसे पंखा छोड़ देती है, गर्मी रहता है तो रूम गर्म रहता है, इसलिए पंखा चला के छोड़ देती है
0: कि रूम ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, गर्मी से तपने लगता है, तो बहुत लोग ये काम करते हैं कि कूलर चलाकर छोड़ देंगे, पंखा चलाकर छोड़ देंगे। चलिए, और इसके साथ साथ ही हमें सौर ऊर्जा की तरफ भी अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, है कि नहीं? अब तो सरकार भी मदद कर रही है इसके लिए, तो ये सारी चीजें भी आप अपने घर वालों से बात करिए और अपने लोगों को बताइए, उन योजनाओं के बारे में बताइए कि हाँ ये सारी चीजें हमें करनी है, पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हों, ये सारी चीजें हमें बतानी होगी, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित रखना है तो हमें तकनीक के साथ साथ चलना होगा। चलिए संदीप जी, आपसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगा, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो दोस्तों, चल रहा है युवा संवाद, जहां आज का हमारा विषय है कि कैसे बचाएं पर्यावरण को। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं, इनसे करते हैं बात। हेलो
2: नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
2: मैम स्वाति सिंह, अंबरपुर मनकापुर जिला गोंडा से बात कर रही हैं।
0: स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मनकापुर गोंडा से आपने कॉल लगाई है। कैसा है वहाँ का मौसम, सब बढ़िया है?
2: मैम मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है।
0: अच्छा, तो पेड़ पौधों का कमाल है या फिर प्रकृति?
2: मैम पेड़ पौधों का कमाल तो सबसे ज्यादा है ना, पर्यावरण में उनका कमाल सबसे ज्यादा होता है, हम लोग करते हैं पर्यावरण का देख रेख।
0: तो किस तरह से आप करती हैं? पेड़ पौधे आपने लगाए हैं? बढ़िया
2: जी मैम, लगाए हैं।
0: बढ़िया, हवा भी देता होगा, छाया भी प्रदान करता होगा, है ना?
2: हाँ मैम, बढ़िया हवा मिलता है, फल भी मिलता है।

0: पेड़ लगाने से हमको ताजा फल और औषधि भी पेड़ से ही तो बनता है। जैसे पेड़ कहीं भी रहते हैं तो उससे हमें औषधि मिलती है, पर्यावरण भी शुद्ध रहता है, हवा मिलती है।
1: अच्छा तो स्वाति जी हमें ये बताइए कि गर्मी और मौसम में जो बदलाव हो रहा है कि गर्मियाँ और गर्म होती जा रही हैं, ये आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया है? कि आपके यहाँ पेड़ पौधे बढ़िया हैं तो आपको बढ़िया ठंडक रहती है?
0: जी मैम, जी मैम नोटिस किए हैं कि जैसे जब टेम्परेचर हाई होता है मैम तो अपने समय से तो मतलब जैसे ठंडी पड़ना या गर्मी या बरसात होना तो अपने समय से एक मुमकिन चीज है ना।
1: पर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है क्योंकि पर्यावरण, हमारी धरती जब बीमार हो रही है, ये कहा जाता है कि पेड़ पौधे कट रहे हैं।
0: मैम से तो हमको पोल्यूशन से बचाना है, जैसे कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकना, जलाना या इधर उधर गंदगी फैलाना, इससे तो पर्यावरण में हानि होगा ही।
1: तो अपने स्तर पे आप लोगों को कैसे प्रेरित करती हैं, खुद क्या करती हैं इससे कि आप पर्यावरण को बचाने में योगदान दे रही हूँ?
0: मैम सबसे पहले तो पेड़ पौधे सबसे ज्यादा जरूरी होता है लगाना, फिर उसके बाद में पानी बचाना, हर जगह साफ सफाई रखना और जानवरों को भी देख रेख करना हमारा काम होता है। पर्यावरण के तहत हमको जानवरों को भी देख रेख करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और बिजली बचाना, पानी बचाना, जैसे बहुत सारा काम, छोटा छोटा काम होता है, इससे हमको जिम्मेदारी होती है, हमको करना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल करना पड़ता है और अपने बड़ों या फिर अपने छोटों को भी समझाना होता है, है ना?
0: जी मैम सही बात है।
1: चलिए स्वाति जी, और कुछ हमारे श्रोताओं को आप संदेश देना चाहेंगी?
0: जी मैम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप का प्रोग्राम युवाणी जो आता है बहुत अच्छा लगता है, हम युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है और सुनते हैं और ऐसे भी मतलब बढ़ावा देते रहे युवाणी प्रोग्राम को, कॉल करते रहे, ऐसे नई नई जानकारी मिलती रहे तो बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: चलिए स्वाति जी, आपसे, आप जैसे कॉलर आते रहें तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और आप भी लोगों को प्रेरित करती रहें, प्रभावित करती रहें अपने अच्छे कार्यों से, हमारी शुभकामनाएं हैं और दोबारा कॉल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम कैसे बचाएं पर्यावरण को। तो आज सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीन बिल्डिंग जैसी कई तकनीकें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं, इनसे करते हैं बात। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हमारे गांव का नाम अखवारा है, हम बस्ती से बात कर रहे हैं।
1: आपका नाम क्या है? और
2: हमारा नाम विनय।
1: विनय जी,
2: यस मैम,
1: बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि आज जो आपने युवा संवाद में कॉल किया है, हमारा विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। आपके अनुसार आप हमें बताइए कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है?
2: पर्यावरण को मैम पेड़ पौधे लगा के बचाया जा सकता है।
1: आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, गंदगी वगैरह तो नहीं फैला के रखते, कूड़ा करकट? हेलो, विनय जी आपकी आवाज कटकर आ रही है, आप जरा बोलेंगे?
2: हाँ मैम, नेटवर्क का समस्या है।
1: तो हमारा आज का विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। तो दोस्तों आप ध्यान रखें नेटवर्क का आवागमन सही हो तो कॉल में बात करने में सुविधा होती है। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश श्री बोल रहा हूँ।
1: अविनाश श्री
3: जी, जी जी,
1: स्वागत है आपका, आपने त्रिपुरा से कॉल लगाई है, कैसा है वहाँ का मौसम?
3: यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है और पर्यावरण भी बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे त्रिपुरा में देखिए सब पूरा माहौल ही हरा भरा रहता है। यहाँ पर देखिए सभी मौसम टाइम से आता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे की हरियाली बना रहता है, तो इस वजह से आज का जो विषय है वो भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखिए।
1: तो आप हमें ये बता दीजिए, समय का हमारे पास अभाव है तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: जी, पहले तो देखिए कम से कम पर्यावरण के लिए हमें ये करना है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा और प्लास्टिक की जो
1: प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें,
3: उसको भी हम कम
1: हमें ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जिन्हें हम दोबारा यूज कर सकें, है ना, रिसाइकलिंग वाली।
3: जी।
1: चलिए दोस्त, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास समय का अभाव है इसलिए हमें यहीं पे अपनी बात को विराम देना पड़ेगा। तो दोस्तों छोटा सा संकल्प लें कि पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, बिजली बचाएंगे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। इसी

0: उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कल हम चर्चा करेंगे युवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। स्थान सेगमेंट में जानेंगे अंडोरो ला वेला को और नए शब्दों को सीखेंगे सेगमेंट शब्दावली में। तो जरूर सुनिएगा दोस्तों, और फिलहाल आज के युवाणी कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त जीनत को दें इजाजत। नमस्कार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 पर। और अब आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम, लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं ये पर्यावरण गीत अनिता श्रीवास्तव और सखियों की आवाज में।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये पर्यावरण गीत, और अब आपको सुनाते हैं अंजू मिश्रा और साथियों की आवाज में ये देवी गीत।

0: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: और अब सुनते हैं कालीचरण मिश्र की आवाज में ये विकास गीत।

101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है।

0: सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation, despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. The Sensex gained 790 points to close at 75,399. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले एक गुमशुदा सूचना सुन लीजिए। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से प्राप्त सूचना के अनुसार मोना मौर्य, पत्नी प्रेमदास मौर्य, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी कुचेरा बाजार, थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश, दिनांक 1 मई 2025 को कुचेरा बाजार से ही कहीं लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, शरीर इकहरा, चेहरा गोल, बालों का रंग काला और आंखें सामान्य है। लापता मोना मौर्य के बारे में यदि कोई सूचना मिले तो कृपया निकटतम पुलिस चौकी, थाने या फिर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से संपर्क करें। सूचना मोबाइल नंबर 8127781558 पर भी दी जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी में कुछ फिल्मी गीत।

कार्यक्रम में शाम सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म कभी हाँ कभी ना से कुमार सानू और देवकी पंडित की ये आवाज है। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीत दिया जतिन ललित ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही शाम सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: बदली स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: एसोसिएशन क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलम अद्य मुंबई इंडियंस दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्सदेशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत यूएई देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वी डी सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति इति वार्ताः।
1: एफएमएन 101.9 पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। अब आइए सुनते हैं लोकगीतों का एक और कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये नकटा विकास गीत कालीचरण मिश्र की आवाज में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गूंजे स्वर गांव के, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ लोकगीत। कार्यक्रम में अब आइए चर्चा करते हैं हीट वेव के बारे में और इससे होने वाले जो अग्निकांड होते हैं उसको लेकर। गर्मी के मौसम में अग्निकांड की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं, जिसमें थोड़ी सी चूक के कारण लोगों के घरों और खेतों में आग लग जाती है। आग लगने के कारण जनधन की क्षति होती है और इससे जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वो बातें कुछ इस तरह से हैं कि घरों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुरानी वायरिंग को समय समय पर जो है बदलते रहें, एसी को लगातार कई घंटों तक न चलाएं, बीच बीच में कुछ घंटों के लिए इसे बंद कर दें, किसी भी छोटी सी चिंगारी को अनदेखा न करें क्योंकि वो बड़ी आग में बदल सकती है, खाना बनाते समय पानी से भरी बाल्टी हमेशा अपने साथ रखें, खाना बनाने के बाद चूल्हे को तथा रेगुलेटर को अच्छे से बंद कर दें, मोमबत्ती और अंगीठी का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो उसे सुरक्षित स्थान पर करें, माचिस लाइटर और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, खेतों से अपनी फसल को काटकर सुरक्षित स्थान पर रख लें, अपने क्षेत्र के अग्निशमन विभाग का नंबर साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन विभाग से संपर्क करें, अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर बांधें। इस संबंध में क्या न करें इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। घरों में तारों से निकलने वाली चिंगारी को नजरअंदाज बिल्कुल न करें, बिस्तर पर धूम्रपान बिल्कुल न करें, खड़ी फसल के किनारे खाना न बनाएं, चूल्हे की चिंगारी और गर्म राख कूड़े के ढेर को खुले में न फेंकें, जब तक सूखी फसल खड़ी हो तब तक खेतों के आसपास खरपतवार न जलाएं, रसोई घर में अनावश्यक ज्वलन पदार्थ न रखें और खेतों में बीड़ी सिगरेट आदि को जलता हुआ न फेंकें। तो श्रोताओं, ये बातें थी हीट वेव से जुड़ी हुई, जिसमें हम आज अग्निकांड के बारे में जो बचाव मेजर्स लिए जा सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है गूंजे स्वर गांव के आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में हम आपको अभी एक और लोकगीत सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
0: सुनते हैं ये किसानी गीत अरविंद मौर्य और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ ही गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत किसान हेल्पलाइन। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे हैं?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: पंचो जय हिंद। विमला, देखा आज बीफे है और बीफे के दिन हो तो अपन सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन, जे हम अपन फोन करके अपने समस्या का समाधान करते हैं, और हर बीफे का हम सब ही एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ पंच से मिलित है।
10: बिल्कुल।
9: आज अपने कार्यक्रम में जो विषय है, इस समय फल वृक्षों में समसामयिक कार्य,
10: विशेषज्ञ भैया हैं मौजूद डॉक्टर जगबीर सिंह जो उनके सहायक प्राध्यापक हैं, फल विज्ञान उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, लेकिन अपन फोन लाइन खुल चुकी है।
9: हाँ, डॉक्टर भैया से बात करे बदे पंचो, आप सभी आपके बगिया में जौन भी फल वृक्ष लगे हुए, अगर उमन कोनो समस्या है, कुछ जानना चाहते हो के बारे में, तो आप हमारे फोन नंबर पर फोन मिलावें। फोन नंबर है 73-76-80-40-90, और सीधे डॉक्टर भैया से आप सबके बात हुई और आपके समस्या के समाधान हुई। ये कार्यक्रम हमारे चली 6:45 से 7:15 तक, हमें आप सबके फोन के इंतजार है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपके स्वागत है।
11: धन्यवाद सर।
9: और स्वागत के साथ साथ जैसे कि आज के जो विषय है, इस समय फल वृक्षों में समसामयिक कार्य
11: जी,
9: तो एहसाइद तो हर केहू के जहन में आम चल रहा है।
11: बिल्कुल जी।
9: और आम की चटनी तो हमें लगत है पंच सब खाए लगे
11: जी,
9: और जैसे चटनी के नावलियों में पानी आ जाता
11: है, पानी आ जाता
9: है, अचार भी पंच बना रहा है।
11: बिल्कुल।
9: आगे पके आम के इंतजार है, बाहर के कुछ आम आ रहा है
11: जी,
9: तो जो बाहर के आम आ रहा है का ये पक गए कि पकाए गए?
11: ये जैसे हमारे यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा जो हमारे भारत देश में जो फायदा

0: है वो जलवायु का फायदा है। तो जैसे कि आप देखेंगे हिमाचल में है या कश्मीर में है या फिर साउथ में जाएंगे तो अलग अलग इन्वायरमेंट है, और हमारे यहाँ पे यूपी में है, राजस्थान में, बिहार में है, या अलग अलग इन्वायरमेंट। तो अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी हम ग्रो करते हैं। वहाँ जो वैरायटी ग्रो करते हैं उनमें जल्दी फल आ जाता है और वो जल्दी मार्केट में आ जाता है। नो डाउट कहीं ना कहीं जो हम फल लगाते हैं, जैसे उसको पुआल में लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि केमिकल लगाते हैं, कुछ जगह केमिकल, जरूरी नहीं है कि केमिकल लगाते हैं, जो अर्ली वैरायटीज हैं उनके फल हमें जल्दी टाइम पे, जो अभी मार्केट में हमें पके हुए मिल रहे हैं, और जो हमारे यहाँ के फल हैं वो अभी कम से कम 10 या 15 दिन लगेंगे पके हुए फल मिलने में।
1: जी डॉक्टर साहब, जो जो हमारे पेड़न में इसमें फल लगा है आम के, बगिया में जाओ तो ये देखा था कि कुछ फल गिर रहे हैं छोट छोट
0: जी।
1: इस समय तो फिलहाल बीच कुछ आंधी आएगी उससे तमाम प्रभावित भा है
0: जी।
1: लेकिन सामान्य समय में भी जैसे धूप है, मौसम सही है, वह समय भी वो फल गिरत है, एक बताओ जाए। लेकिन देखे फोन आएगा है पंच के। हेलो
2: जी सर, नमस्ते
1: भैया। नमस्ते, आपके नाम का है और कहाँ से बोलते हैं?
2: सर मेरा नाम विजय कुमार वर्मा, मैं कुशमा अयोध्या से बोल रहा हूँ।
1: ब्रजेश भैया डॉक्टर साहब बैठे हैं, जो समस्या हुए बात करें
0: जी। ब्रजेश बताइए।
2: सर हमारे पास अमरूद की खेती है, अमरूद में जो है गदहिला कीड़ा बहुत लगते हैं
0: जी,
2: उसके लिए कोई दवा बता दीजिए।
0: उसमें जैसे आप जो कितने साल का पौधा है आपका?
2: सर अभी 1.5 साल का हुआ है।
0: अच्छा 1.5 साल का हुआ है, तो वो जो जी
2: वो 1.5 साल का पौधा है सर, और फल लगने के बाद उसमें कीड़ा लगते हैं गदहिला।
0: तो उसमें उसमें जैसे आपको पता होगा आई थिंक, जहां तक मैं मान रहा हूँ, कि जो फार्मर जो हमारा गुआवा ये अमरूद जो ग्रो करते हैं कि किस टाइम की हमने फलत लेनी है और किस टाइम की फलत नहीं लेनी है। जैसे हम ये मानते हैं कि जो हमारी बरसात वाली फलत है वो हमने नहीं लेनी है अमरूद के केस में।
2: सर ठंडी वाली फसल में भी कीड़ा लगते हैं?
0: हाँ, तो ठंडी वाली फसल के लिए जैसे आप में फल जब लगना स्टार्ट हो जाता है और आपको लगेगा कि उसमें कीड़ा लगने वाला है, या कीड़े से पहले आप देखेंगे तो एक मक्खी होती है, वो मक्खी उस पे फूल पे होती है और फूल जब फल बन जाता है तो उसके बाद में लगती है, उसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 1.5 साल का पौधा है तो आप 1.5 या 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरा क्या है कि जो मक्खी आपकी लगी हुई है, अगर आपने उसको कंट्रोल करना है तो देखे होंगे कि कुछ स्टिकर्स लगे आते हैं आजकल, तो उसको हम पौधों के आसपास लगा देते हैं तो वो उसको में जो हमारी मक्खी होती है वो चिपक जाती है। जैसे कोई भी चिपकने के लिए आप लगा सकते हैं, या मार्केट में भी मिलता है, आप जाएंगे तो वो स्टिकर बोलेंगे कि मक्खी को चिपकाने के लिए हमें स्टिकर दे दीजिए, तो वो लोग दे देंगे, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी।
1: जी रसब बात रही कि जो छोटे छोटे आम गिर जा रहे हैं,
0: तो सर उसमें क्या है कि जैसे जो छोटे छोटे आम है उसकी कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारा जब फल के बाद फूल के बाद जब फल लगता है, तो जब फल लगेगा तो उसमें हो सकता है कि हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है या फिर हमारी मॉइस्चर की कमी है। जैसे अमूमन माना जाता है कि जब फूल से फल बनता है तो उस टाइम पे नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फल बन गया है उस टाइम पे फिर उसमें नमी होनी चाहिए। तो अगर वो 10-15 दिन का जो पीरियड है अगर उसमें हमने पानी नहीं दिया तो वो भी एक कारण हो सकता है कि हमारा जो फल गिर सकता है।
1: तो जैसे इसमें पूरे बगिया में फल लग चुके हैं
0: जी,
1: तो क्या सिंचाई की जा सकती
0: है? अब इस टाइम पे सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे आप देख रहे हैं अभी बरसात तो होनी नहीं है और कहीं ना कहीं हमारी आंधी जैसे चल रही है तो उससे बहुत ज्यादा हमारा फल गिर रहा है, तो उसमें नमी होगी तो हमारा फल जो है उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हमारे फल को जो पकने में है कम से कम कुछ जो लेट वेराइटीज हैं उनको 1 महीना लगेगा कम से कम, और जो अर्ली वेराइटीज हैं उनको कम से कम 15 दिन लगेगा। तो अभी प्रॉपर नमी रखनी चाहिए जितने भी आम के हमारे बगीचे हैं, जिससे कि हमारा फल गिरने के भी कम चांसेस रहेंगे और साइज भी हमारा बढ़ेगा
1: जी। जो गिर रहे हैं जैसे आप बताएं कि कोनो न्यूट्रिएंट्स की कमी या कारण से, तो का वके पूर्ति इस समय के हिस्से रुक सकत है?
0: इस टाइम पे नहीं कर सकते हैं उसकी पूर्ति। उसकी पूर्ति क्या है कि जैसे हम जो हमारी पत्तियां हैं उनसे हमें पहले आइडिया लगाना होता है, तो वो हम जब हमारा फूल आ रहा होता है उसी

0: टाइम पे हमने उसको कंट्रोल करना है। जब उस टाइम पे हम भरपूर उसको मात्रा दे देंगे, हमारी जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है या कोई भी जो कंट्रोल करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो, तो वो अगर हम पहले दे के रखेंगे तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस टाइम पे गिर रहा है उस टाइम पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
1: तो इस वजह सिंचाई हम कर सके थे।
0: हाँ, इस टाइम पे सिंचाई हम कर सकते हैं जो हमारे फल लगे।
1: कुछ पोषक तत्व भी दे के आवश्यकता है इस समय?
0: अभी इस टाइम पे पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है।

0: जो उन हमारी
1: फल है।
0: कलमी पौधा है
2: जी।
0: दशहरी है
2: जी।
0: या और कुछ फल फट जा रहा है
2: इसमें क्या है कि जैसे हमारे यहाँ की जैसे अयोध्या रीजन में जैसे देखेंगे तो यहाँ की सॉइल अलग अलग है। जैसे हम देखेंगे कि एक खेत है उसमें अलग तरह की सॉइल है, दूसरे खेत में अलग तरह की सॉइल है। तो जो नए मैक्सिमम चांसेस होंगे जो हमारे नए पौधे हैं, कलमी जो पौधे होंगे या 10-12 साल के जो पौधे होंगे उनमें चांसेस होंगे कि हमारा जो फल फट रहा होगा। तो या तो हो सकता है कि हमारा जो पानी हमने मॉइस्चर नहीं दिया उसको, उसकी वजह से ही फट जाएगा। जैसे अभी बीच में बरसात हुई थी, हमने 15 दिन उसमें पानी नहीं दिया और एकदम से बरसात हो गई, तो उससे भी फट सकता है। या फिर बोरोन की कमी से फटने के चांसेस रहते हैं हमारे क्रैकिंग और फटने।
1: तो
2: उसके लिए हम वही है कि जिस टाइम पे फट रहा है उस टाइम पे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले से हम जैसे बरसात, मैंने बताया कि बरसात अगर हमने 15 दिन से पानी नहीं दिया और बरसात आ गई तो वो फटेगा, लेकिन अगर पहले पानी दिए होते मतलब कोई भी बीमारी है उसको हमें पहले से ही कंट्रोल करना।
0: आप ही कहा चाहते हैं कि बगिया में भी हमें सबका चाहिए कि समय समय पर मट्टी के जांच कराई
2: जी,
0: कि हमारे बाग में कोनो जो कोने पोषक तत्व की कमी है
2: जी,
0: और जो उन कमी हुए वह के पूर्ति जरूर करें,
2: जरूर करें। और वो टाइम से करनी है, जैसे कि हमारे आम की इस टाइम पे हमारे यूपी में सबसे ज्यादा है
1: जी।
0: जी सब देखें, हमारे पंच के फिर फोन आएगा है।
1: हेलो
3: हेलो,
1: हाँ भैया अपन नाम बताओ, मैं कहाँ से बोल रहा था?
3: हम सुरेंद्र कुमार वर्मा बोल रहे हैं।
1: वर्मा भैया बताओ, मैं कहाँ समस्या है, कहाँ से है? हाँ भैया बताओ
2: जी। वर्मा जी बताइए।
3: समस्या ये है कि हमारा एक आम का पेड़ है
2: जी,
3: तो आधी पर से टूट गया है,
2: ऊपर से टूट गया है।
0: वर्मा भैया
2: जी,
0: वर्मा भैया जरा सा रेडियो से आप हट के बात करें, क्योंकि आवाज आपके जो है इको आ रहा है।
3: जी सर,
0: जी
2: जी बताइए।
3: ये हमारा आम का पेड़ जो है आधे पर से टूट गया है, एक पेड़ है
2: जी,
3: तो हम पूछना चाहते हैं ये है कि मतलब उसको आरी लेकर काट दे आगे पर से,
2: हाँ
3: तो क्या उसमें कल्ला आ सकता है?
2: कितने साल का पौधा है आपका?
3: लगभग 5 साल का पौधा है।
2: हाँ उसमें कल्ला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो आपका टूटा है उससे थोड़ा सा नीचे से, जैसे आप देख रहे होंगे ना वो फक सा गया होगा, मतलब वो टूटने के बाद, तो उससे थोड़ा सा नीचे से काटिएगा, प्रॉपर वो उसकी कटिंग हो। और उसके बाद आप उसमें ऐसा करिएगा, या तो मिट्टी का लेप या फिर गोबर का लेप लगा दीजिएगा। अगर इससे और एडवांस अगर आप कर सकते हैं तो चूना और नीले थोते का मिक्सर करके आप लगा दीजिएगा उस पर, जहां से आप चूना और नीला थोता वो आपने लेना है। जैसे आप लेंगे, सपोज करिए कि एक केजी आपने चूना लेना है और एक केजी आपने नीला थोता लेना है, तो उसमें 10 लीटर पानी आपने डालना है, तो उसी हिसाब से बनाइएगा जितना आपको जरूरत होगी
3: जी। ये कहाँ मिलेगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम?
2: नीला थोता और चूना, ये तो आप कहीं पे भी जो स्टोर है आपके आसपास जो दवाई ववाई देते होंगे आप उनके पास जाएंगे, वो लोग दे देंगे
3: इसको एक में, मतलब बराबर बराबर मिला ले।
2: जो दवाई लेंगे आप नीला थोता और चूना वो बराबर बराबर लेना है, लेकिन पानी उसमें 10 लीटर डालना है। जैसे आप 1 लीटर लेंगे तो वो एक केजी अगर लेंगे तो 10 लीटर पानी डालना है उसमें
3: जी। उसका लेप कर दे,
2: हाँ उसका लेप कर दीजिएगा
1: जी
2: जी।
1: डॉक्टर भैया इनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन हमें सब आपसे जानना भी कि ये स्थिति जो हमारे किसान पंच है कुछ नवा बगिया लगावा चाहते, तो उन्होंने की ताई ऐसी स्थिति का करे का जरूरत है, कैसे उनका तैयारी करे का है?
2: ये बहुत अच्छा सही क्वेश्चन है
1: जी।
2: तो उसमें क्या है कि अभी आज का जो टाइम है ये जो चल रहा है मई और जून में, इसी टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो नए बगीचे लगाते हैं उसके लिए गड्ढे खुदाई करते हैं। गड्ढों की जो खुदाई है इसी टाइम पे होनी चाहिए, और वो गड्ढे की खुदाई होने के बाद कम से कम 15 या 20 दिन हमने उस गड्ढे को खुला छोड़ना है। उसमें कोई भी बीमारी है, कोई भी कीट है, तो इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उससे वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हमने उसको 15-20 दिन बाद, जैसे हमने गड्ढा भी जो खोदना है उसकी जो गहराई है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पौधा लगाना है। जैसे आम लगाना है, अमरूद लगाना है, या फिर नींबू लगाना है, तो सबके लिए अलग अलग है। जैसे कम से कम 1-1 मीटर का पौधा गड्ढा हमने खोदना है आम के लिए
1: जी।
2: लेकिन अगर हमने अमरूद लगाना है या फिर नींबू लगाना है तो उसके लिए हमारा 2 फीट का गड्ढा भी काम कर सकता है।
1: अच्छा।
2: तो उस हिसाब से फिर हमने उसमें क्या करना है कि जो उसकी मिट्टी निकली हुई है नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करना है और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करना है, और उसमें हमने गोबर की खाद मिलानी है। और अगर

0: हमारा सॉइल थोड़ी सी ऊसर है जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद निकला होता है, तो उसमें हमने बालू मिलानी होती है। ये सब मिला के हम भर देंगे तो पहली जो बरसात होगी उससे जो मिट्टी हम भरेंगे वो दब जाएगी, उसके बाद हम पौधे लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब देखें, फिर फोन है वरपंच के।
2: हेलो हाँ भैया, आप अपना बताओ, कहाँ से बोल रहे थे?
3: हेलो
2: भैया, आप अपना बताओ।
3: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए पहले, कहाँ से बोल रहे
3: हैं? मिथुलाल जिला बस्ती पोस्ट सूदीपुर ग्राम वर्ग भैया।
2: बिल्कुल भैया
0: जी, बताइए क्या परेशानी?
3: सर मैं अमरूद का जो है फल लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं
0: जी,
3: तो वो छोटा छोटा है, उसमें फल आ गया अभी से
0: जी। कितने दिन का पौधा है, कब लगाए हैं आप?
3: अरे जो 3 महीने का हुआ पौधा अभी।
0: अच्छा, तो ऐसा करिए, कितने पौधे लगाए हैं आप?
3: अरे है 15-20 पेड़ हैं।
0: तो अभी उसमें से जितने भी फल आए हुए हैं उनको तोड़ दीजिए।
3: तोड़ दें? अच्छा
0: हाँ, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं तोड़े तो वो फल का वृद्धि नहीं होगी और पौधे की वृद्धि नहीं होगी, और फिर बाद में हमें जो जितनी पैदावार मिलनी चाहिए वो पैदावार नहीं मिलेगी।
3: नहीं मिले, अभी तोड़ दें?
0: हाँ अभी तोड़ दीजिए उसको।
3: ठीक है, ठीक है सर। और हम आम का पेड़ लगाए हैं, वो आम बहुत सूखा सूखा के गिर रहा है।
0: पौधा गिर रहा है या पत्तियां गिर रही हैं या शाखा गिर रही है?
3: नहीं पत्तियां नहीं, ये अमरूद आम गिर रहा है उसमें से।
0: तो कितने दिन का पौधा है आपका?
3: अरे ये तो काफी दिन का है, आम मतलब बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन उसे गिर जाता है।
0: अच्छा, तो उसमें आपने नमी है, उसमें अभी पानी नमी है?
3: हाँ नमी है, नमी है, हम उसको सिंचाई कर रहे हैं बराबर।
0: अच्छा, तो उसमें आप जो आसपास आपके होंगे जो भी स्टोर वाले होंगे, आप उनसे एक वो आता है ग्रोथ रेगुलेटर करके आता है, आप उनको बोलिएगा कि मतलब उसको क्या नाम है, NA का स्प्रे करवा दीजिएगा 10
3: अच्छा।
0: 10 ppm वो बता देगा आपको, 10 ppm पर लीटर या 10 mg पर लीटर के हिसाब से, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। लेकिन ये कंट्रोल जो है, आप ये कहें कि सारा कंट्रोल हो जाएगा वो नहीं होगा, उसके लिए पहले से ही आपको जब हमारा फूल आना होता है उससे पहले से ही हमें पत्तियों को देख के या फिर उसकी जो मिट्टी की जांच करा के उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना होता है।
3: और सर मैं जो है उसका जो है नेबुआ का पेड़ लगाए हुए हूं
0: जी,
3: नेबुआ का जो है ये, उसमें फल नहीं आ रहा है।
0: कितने दिन का पौधा है?
3: पौधा तो 2 साल का हो गया है।
0: तो वो बीजू पौधा था या कलमी पौधा था?
3: फूल बहुत आता है लेकिन फल नहीं रुकता है।
0: अच्छा, तो उसमें भी उसमें भी ये जो मैंने आपको बताया था कि फल, जैसे आप जाएंगे ना किसी भी स्टोर के पास तो उसको बोल उसे बोलिएगा कि आजकल जो टमाटर है, टमाटर में फल से फूल सॉरी फूल से फल बनने के लिए एक दवाई छिड़की जाती है।
3: अच्छा,
0: है ना, तो उनसे बोलिएगा तो जो टमाटर में जो दवाई स्प्रे करते हैं वही स्प्रे आप जब फल आपका फूल आए तो उस टाइम पे स्प्रे कर दीजिएगा।
3: वो कागजी ने हुआ है बहुत, परसों परसाल बहुत फूल फल लगा था, इस समय तो नहीं लगा फूल।
0: हाँ, तो जो टमाटर में हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि टमाटर सभी के यहाँ आसपास में होता है, तो उसमें उसमें जो स्प्रे करते हैं वो उनसे बोलिएगा, तो रूटेक्स या सॉरी फ्रूटेक्स करके वो देते हैं, अगर नाम लिखना है आपने तो फ्रूटेक्स करके देंगे, तो उसमें हमारे ग्रोथ रेगुलेटर होंगे, उसका अगर आप स्प्रे करेंगे तो उस पर फल रुक जाएगा।
3: ठीक
1: जी, फ्रूटेक्स
3: हाँ
1: जी। डॉक्टर साहब फिर एक दफा आम के बात कर लीजिए
0: जी,
1: आम पे ही आज बात ज्यादा हो रही है। जो हमारे बगिया में आम लगे हैं
0: जी,
1: जो दशहरी है या लंगड़ा है चौथा है एमन तो कम, लेकिन देसी वाले में कोयलिया भी प्रभाव डालत है, तो इससे का बचा जाए कैसे?
0: उससे बचने के लिए जैसे हमें क्या है कि आज के अभी उसको तो पकने में टाइम लगेगा, जो हमारी देसी वैरायटीज हैं उनको थोड़ा सा लेट पकती हैं, और उसमें जो हमने अभी स्प्रे करना है या फिर उसको रोकना है तो उसके रोकने के लिए हम जो हमारी इंसेक्टिसाइड होंगी वो स्प्रे कर सकते हैं हम, जो भी इंसेक्टिसाइड है जैसे क्लोरोफायरीफॉस है या फिर इमिडाक्लोरपिड है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी। अच्छा, देसी वाली उसमें बाग में माटा है और भुनगा है
0: जी,
1: ये ज्यादा राहत है। कई दफा तो पता चले कि आम तूरे के लिए या बगिया में गए तो माटा तमाम घेर लेन काटे लगे या भुनगा आएगे तमाम, तो ई का हमारे

0: फसल का भी प्रभावित करते हैं?
1: ये फसल को हमारी, जैसे हम देखते हैं कि मैंने जैसे बताया कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी हमने ट्रीटमेंट देना है तो वो पहले से देना, जैसे माटा अगर देखे होंगे तो वो ऐसा नहीं है कि जब हमारा फल बड़ा हो रहा है उस टाइम पे लग रहा है, वो जब हमारा फूल आ रहा होता है तो क्योंकि फूल में बहुत सुगंध होती है
2: जी।
1: तो फूल उसी टाइम से वो माटा उसमें स्टार्ट होता है।
0: लेकिन फोन आएगा है।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ भाई आप अपना बताओ, मैं कहाँ से बोला था?
3: नमस्ते
2: भैया, कहाँ से बोलते हैं? अपना बताओ।
3: अयोध्या जिला अयोध्या ग्राम भारती पुर से।
2: अपना बता दे भैया।
3: सब जो है मतलब की नींबू फरता है वो बड़ा वाला है
1: जी,
3: वो नींबू गिर जा रहा है सर।
1: बड़ा होने के
3: साथ डाले सर,
1: बड़ा होने के बाद गिर रहा है कि फट रहा है, कैसे मतलब क्या दिक्कत आ रही
3: है? जैसे ताजी में दुआ होता है
1: जी,
3: व्यक्ता है और सारा फल गिर जा रहा है।
1: तो वो जैसे आप देख रहे होंगे या तो थोड़ा सा पीला पड़ रहा होगा और फिर उसके बाद में सूख रहा होगा तब गिर रहा होगा
3: जी।
1: तो उसमें हाँ पहले पीला पड़ रहा होगा और उसके बाद में गिर रहा होगा, तो उसमें जैसे नमी है उसमें, पौधे में पानी है, उसमें नमी है नीचे?
3: पानी डालते हैं तो
1: डेली भी नहीं डालना है, ज्यादा अच्छा। भी ज्यादा भी पानी नहीं डालना है, और उसमें क्या है कि उसका जो तना है उसके पास में पानी नहीं डालना है
3: सर। मतलब जैसे आज हमने डाले उसके बाद में कब डाले ये बता दीजिए।
1: उसके मतलब जैसे 2-3 दिन बाद आपने देखना है कि वो पूरा नीचे से सूख गया होगा तब डालना है, ऐसा नहीं करना है कि कंटिन्यू उसमें पानी डालते रहेंगे तो उसकी जो जड़ हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, जो नई जड़ निकलती है ना कंटिन्यू तो वो रुक जाती है
3: जी।
1: तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले फल जो हमारा बड़ा होना कम रुक जाता है और पीला होगा और फिर सूख के गिरने लगता है वो
3: जी सर। मतलब जैसे फल नहीं गिरेगा
1: जी,
3: जब जड़ का पानी सूख जाएगा तभी डालेंगे।
1: हाँ तब पानी डालना है,
0: जब मट्टी में दरार बने लगे तो दोबारा सिंचाई जरूर,
1: दोबारा सिंचाई जरूर।
3: ठीक सर, ठीक
1: जी।
3: नमस्कार सर।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर भैया, बात होती रही भुंगा का और माटा का
1: जी,
2: तो कैसे हम सब इसे ले जा पाए?
1: तो जैसे मैं बता रहा था कि हम कोई भी हमारा जो बगीचा है उसमें पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि कब हमने पानी देना है, कब हमने दवाई डालनी है, कब हमने खाद डालना है। तो जैसे माटा आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा फल बड़ा हो रहा है एक साथ आ गया, वो क्या है जब फूल आ रहा होता है उसमें सुगंध आना स्टार्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा मीठा भी होता है उस टाइम पे, तो उसी टाइम पे माटा आना स्टार्ट हो जाता है और वो लीफ को रोल करना स्टार्ट कर देता है और फिर उसी के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। तो हमें उसी टाइम पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इस टाइम पे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा हमारा इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसका कोई ऐसा नहीं है कि हमारे फल पे कोई इफेक्ट है, फल पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो जो पौधे पे जो इफेक्ट होता है वो फूल आ रहा होता है उसी टाइम पे होता है
0: जी। भाई साहब एक हमारे मन में बात और आवत है
1: जी,
0: फिलहाल मन यहू कहा था कि संभव नहीं है
1: जी,
0: लेकिन तकनीक इतना आगे तक चली गए है
1: जी,
0: जैसे कि कोनो कोनो पेड़ के फल मीठा होते है, कोनो के खट्टा होते है, कोनो के बहुत टेस्टी होते है
1: जी,
0: का कोनो ऐसनो तकनीक अभी तक विकसित है कि फल मीठा ही लगे?
1: उसमें जैसे जितने भी फार्मर भाई हैं, किसान भाई हैं, वो सब जानते हैं कि जब हम पौधा लेते हैं तो वो बीजू पौधा नहीं लगाते हैं, सब देखते हैं कि कलमी पौधा लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं से या तो हमारे जो KBK हैं या हमारी यूनिवर्सिटी है या कोई सर्टिफाइड नर्सरी है
2: जी।
1: इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाया है, जो 9 सेंटर हैं हमारे इंडिया में, हमारे जो किसान भाई हैं उनको अच्छी क्वालिटी का पौधा देने के लिए। जैसे जो हम कलम लगाते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या हमारे अगर हमने 100 पौधे लगाए हैं तो 100 के 100 पौधों पे हमें मीठा ही फल मिलेगा
2: जी। डॉक्टर भैया लेकिन अब फिर बात हो जाए, हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाँ भैया अपन बाजा पाछे कर लियो, फिर अपन ना बताओ कहाँ से बोलो थो।
3: मैं संतोष कुमार,
2: संतोष भैया
3: ग्राम पोस्ट जिलौली जनपद गोंडा से बात कर रहा हूँ।
2: भैया बताओ, लेकिन बाजा पाछे कर लो तो भाई हमें सबका आवाज आपके बढ़िया से सुनाई पड़े, बताओ
3: भैया। नया नर्सरी लगाना है आपके बारे में
1: जी। संतोष भैया
3: नमस्कार, डॉक्टर साहब
1: नमस्कार जी, बताइए
3: सर ये आम के बारे में कुछ।

0: पूछना है, तो सर नया बगीचा लगाना है, तो उसके लिए समसामयिक कार्य कैसे करें और कितनी जुताई करनी पड़ेगी, कितनी खाद मात्रा में करनी पड़ेगी?
1: जी देखिए, आपने अगर नया बगीचा लगाना है तो ये सही टाइम है, सबसे पहले आपने गड्ढे खुदवाने हैं, और जो गड्ढा है कम से कम आपका वो 1 मीटर गहरा होना चाहिए और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
0: जी सर।
1: तो उसमें जब आपका गड्ढा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा हो जाएगा, उसके बाद आपने उसकी जो कम से कम 15 या 20 दिन उसको खाली छोड़ना है।
2: जी।
1: हेलो।
3: जी जी जी बता दें।
1: संतोष भैया सुन रहे हैं?
3: हाँ सुन रहे हैं।
1: तो कम से कम आपका 15-20 दिन आपने खाली छोड़ना है उसको। उसके बाद में उसकी जो मिट्टी आपने निकाली है, ऊपर वाली मिट्टी को साइड में कर देना है और नीचे वाली मिट्टी को दूसरी साइड में करना है। ये इसलिए करना है कि जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको नीचे डालना है और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर डालना है, और जो ऊपर नीचे वाली मिट्टी को जो आपने ऊपर डालना है उसमें आपने गोबर की खाद मिलानी है और थोड़ी सी उसमें आप बालू मिलाइएगा। तो ये ऊपर वाला जो है आपका आपका कम से कम 2 या 3 भाग आपकी मिट्टी रहेगी, 1 भाग आपका बालू और गोबर की खाद रहेगी। उसको जब आप भर देंगे और आप उसमें कम से कम वेट करेंगे, 1 बरसात जब हो जाएगी, जब 1 बरसात हो जाएगी तो उसके बाद जो गड्ढा आपने मिट्टी भरी है वो बैठ जाएगा।
2: जी।
1: जब वो बैठ जाएगा आपने थोड़ी सी मिट्टी उसको लेवल करने के लिए और भरनी है। उसके बाद आप 1 बरसात होने के बाद आप उसमें पौधा लगाइएगा, और पौधे का आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी सर्टिफाइड नर्सरीज हैं या फिर हमारे केवीकेज हैं या हमारी यूनिवर्सिटी है, वहीं से पौधा लीजिएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें 5 साल बाद पता लगा कि हमारा जो पौधा लगाया हुआ है, जो हमें वैरायटी लगानी चाहिए वो नहीं है
2: जी,
1: तो बहुत नुकसान हो जाएगा, उसको फिर हम ठीक नहीं कर सकते
2: जी।
3: तक सब बात तो आपसे बहुत करेक्ट रहा, मन में बहुत बात आ रही है
1: जी,
3: लेकिन समय अभाव है और अब समय कह रहा है कि अब अपने कार्यक्रम से धीरे धीरे खत्म की जाए कार्यक्रम। आप हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर जगवीर सिंह भैया, और हमारे पंच का जो आज के विषय रहा इस समय फल वृक्षों में समसामयिक कार्य, ये पर बहुत बढ़िया जानकारी दीन का। उम्मीद करी थे कि पंच हमारे जैसे आप बताइन हैं वही तरह से अपने बगिया के ध्यान रखी है और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
3: मिमला।
2: हाँ।
3: पंच तक ही कार्यक्रम पहुंचा, इमन
2: तकनीकी सहयोग रहा अश्विनी कुमार
3: शुक्ला भैया और प्रस्तुति रही संजय धर द्विवेदी भैया।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन पंच का बाजार भाव और मौसम के हाल बता दी जाए तो आज जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से मौसम के हाल मिला है, अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस जो उनकी सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा, और न्यूनतम तापमान रहा 22.5 डिग्री सेल्सियस यह सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा। आर्द्रता अधिकतम रही 81%, न्यूनतम 48%, हवा के गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दिशा रही दक्षिणी पूर्वी।
2: पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहे के संभावना बाटे, बरखा होने की संभावना नहीं है।
3: और अयोध्या मंडी से जो बाजार भाव मिला है यह पंच का बता दीन जाए। आज जो चावल कामन रहा 3,090 रुपया प्रति क्विंटल रहा, और गेहूं दड़ा 2,585 रुपया, मक्का पीली 2,360 रुपया, उड़द काली 9,100 रुपया, चना देसी 6,400 रुपया, मसूर 7,000 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
2: जेमा रारी की दाली रही 10,900 रुपया, आलू सफेद रही 720 रुपया, प्याज लाल वाली रही 1,250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, टमाटर 1,950 रुपया, जेमा लहसुन का भाव रहा 6,900 रुपया, तरोई रहा 2,200 रुपया, खीरा का भाव रहा 1,400 रुपया, बैगन 2,250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, हरी मिर्च 3,200 रुपया, कद्दू 1,375 रुपया, अदरक रही 5,500 रुपया प्रति क्विंटल,
3: और शिमला मिर्च रहा 2,700 रुपया, भिंडी 1,900 रुपया, लौकी 1,370 रुपया, करेला 1,400 रुपया, केला पक्का 2,585 रुपया, नींबू 9,600 रुपया, पपीता 2,600 रुपया, सेब 11,100 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
2: जेमानार का भाव रहा 8,300 रुपया प्रति क्विंटल, गुड़ बट्टी वाला 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, चीनी रही 4,130 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। इतो रही अयोध्या मंडी से बाजारी के भाव। लेकिन चलत चलत काल पंचन का जो काल कार्यक्रम है बताओ चला जाए, काली चर्चा हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पे, भेंटवार्ता सुनवाई जे, बातचीत रहे प्रगतिशील कृषक से लौकी परवर धान की रोपाई, और यह विषय पे बताइए श्री केदारनाथ मौर्य जो इनसे बतवाई है प्रभाकर शुक्ला भैया, और गीत धोनी तो रहा करें।

0: पंच से हम यही कहबे, पंच अपन अयोध्या रेडियो स्टेशन से कार्यक्रम सुनत रहे और अपने किसान वाणी कार्यक्रम का भी सुने। हर विषय का हम सभी एक नए विशेषज्ञ के साथ अपने कार्यक्रम में मिलित है, अगले विषय का फिर मिलब। तब तक खातिर पंचो ओम
1: और विमला का दी अनुमति।
0: जय हिंद।
2: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान हेल्पलाइन कार्यक्रम, जिसे हमने प्रसारित किया कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सभा में आगे बढ़ने से पहले अब आपको अवगत करा देते हैं हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। तो अब से थोड़ी देर बाद 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन, महफिल गजल कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर, और 9:30 पर सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अयोध्या होगा। और अब बात करते हैं हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। तो सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर अमृत कलश कार्यक्रम होगा, सुर संगम कार्यक्रम में सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 पर, कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुबह 8:30 पर, जिसके अंतर्गत आज की बात के अंतर्गत चर्चा सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, और साथ ही एक वार्ता सुनिएगा अयोध्या के संत महात्मा बना दास जी एक परिचय इस विषय पर महंत अंकित दास से। सुबह 9:00 से सुनिएगा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे आपकी व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशों पर फिल्मी गीत। 9:30 पर कार्यक्रम हेलो अयोध्या होगा। सुबह 10:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी, अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुनेंगे दिन में 12:30 पर। दिन में 1:00 से सुनिएगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जिसमें फेसबुक फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत होंगे। गीतांजलि कार्यक्रम दिन में 2:00, दिन में 2:30 पर अंगना कार्यक्रम होगा, जिसमें कल आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती के बारे में, और साथ ही एक वार्ता सुनेगा स्वस्थ पारिवारिक जीवन का व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज में योगदान, वार्ताकार होंगी अर्पिता मिश्रा। शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें कल चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, और साथ ही स्थान सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा एंडरोला बेला के बाहे में। इसके अलावा एक बाह्य ध्वनि अंकन भी सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर रेडियो श्रोताओं से बातचीत। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत कल आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:10 पर सुनेंगे शाम सुहानी कार्यक्रम। कल शाम 6:30 पर गुजेश्वर गांव के कार्यक्रम होगा कृषि जगत कार्यक्रम, कल शाम 6:45 पर, जिसमें कल चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, और साथ ही एक भेंटवार्ता सुनिएगा बातचीत एक प्रगतिशील कृषक से। वार्ताकार होंगे केदारनाथ मर और आपसे बातचीत करेंगे प्रभाकर शुक्ल। इसके अलावा बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी होगी। कल रात 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन होगा, रात 9:15 पर महफिल गजल कार्यक्रम, और रात 9:30 से सुनेंगे आप हेलो अयोध्या कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 पर। शाम के 7:20 होने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
4: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, आपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वो सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या

0: हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं वो ई व्हीकल टाइम तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
1: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
1: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत के बोलों को लिखा है इंदिवर ने और बप्पी लहरी का संगीत है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म का नाम मुद्दत।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना मुद्दत फिल्म से। अब आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ा रुपया, इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, बसु मनोहरी का संगीतबद्ध किया गीत।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गीत वादा करो सा वादा करो जानम, ये आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म आनंद से। गायिका लता मंगेशकर हैं, गुलजार के लिखे बोल, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा।

0: आनंद फिल्म का गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया, गुलजार की बोल थी सलिल चौधरी का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है।
1: वक्त से कहना जरा
0: जय हिंद।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार, जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी, जानना चाहेंगे सबसे पहला मंच पर जाने का मौका कब मिला आपको?
2: मंच पर जाने का क्लासिकल म्यूजिक बजाने के लिए, आई थिंक गुरु जी के, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ सीखने के लिए, वो वही पर गुरु पूर्णिमा के अच्छा के टाइम पे जब स्टेज पे पहली बार मौका मिला था।
1: हाँ हाँ।
2: तभी वही एक था
1: गुरुकुल के वार्षिकोत्सव।
2: हाँ, एग्जैक्टली।
1: इसके अलावा किसी ने आप प्रस्तुतिकरण के लिए लाया हो या किसी ग्रुप के साथ, किसी बैंड के साथ जुड़ने का मौका मिला हो?
2: आई थिंक जो एकदम पहले का जो प्रोमिनेंट मुझको एक परफॉर्मेंस जो याद है वो था पिंपरी चिंचवाड़ में एक स्वरजंकार म्यूजिक फेस्टिवल का ही एक था। उसमें एज एक फ्यूजन ग्रुप के पार्ट में मैं गया था।
1: अच्छा।
2: तो उस टाइम आई थिंक सितार प्लेयर थे स्टेज पे, वायलिन थे
1: जी,
2: तबला प्लेयर थे, ड्रमर, और फिर मैं उसमें से एक म्यूजिशियन था। तो वो क्लासिकल के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअली मेरे लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले पहले था, मतलब मैं जस्ट 4-5 साल ही हुए थे और मैं स्टेज पे था, बहुत नर्वस था।
1: हाँ।
2: और बाकी सब काफी एक्सपीरियंस।
1: वहाँ क्या बजाने के लिए मिला आपको, मतलब क्या बजाने के लिए कहा गया आपसे?
2: वहाँ पर वही है कि क्लासिकल म्यूजिक में काफी इम्प्रोम्प्टू चीजें काफी होती है स्टेज पे।
1: जी जी।
2: तो वो सीखने को काफी मिला। तो हम एक राग में कुछ फ्यूजन कॉम्पोजिशन थी, आई थिंक किरवानी राग था, और उसमें सब बजा रहे थे और बीच बीच में मुझे मेरे तरफ इशारा कर देते थे कि अच्छा अभी आप कुछ बजाइए, और फिर और वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस होते हैं और उन्हें पता है क्या चल रहा है, बट आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो। तो
1: जी जी। आपने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक बनाया है बैंड?
2: हाँ, तो वो एक कलाइडोस्कोप नाम का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है
1: जी।
2: और ये एक्चुअली काफी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों से मैं एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या ही ज्यादा परफॉर्म करता आया हूँ, और क्लासिकल म्यूजिक में जो अकंपनी का जो पार्ट होता है, जो हार्मोनियम प्लेयर करते हैं या जो सारंगी वादक करते हैं वोकलिस्ट के साथ
1: जी,
2: उस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट पर अकंपनीमेंट करने के लिए।
1: अच्छा।
2: इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस का और वोकलिस्ट का होता है, वो काफी अलग होता है।
1: अच्छा।
2: और जिस तरह से वोकलिस्ट, क्योंकि उनके पास शब्द होते हैं, तो जब वो शब्दों को यूज करके जो सोच निकलती है उनमें से,
1: हाँ।
2: वो एक सीखने को काफी मिलता है कि अच्छा इस तरह से भी सोच सकते हैं ये। अच्छा। सेम आलाप को अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल पे ऐसे कर रहा हूँ,
1: हाँ।
2: एक वोकलिस्ट किसी और तरीके से जो सोच रहा है
1: जी जी,
2: तो उससे काफी सीखने को मिलता है जब ऐसे।
1: यही अपनी सोच रखने का मौका आपको मिलता है जब आप अकेले बजा रहे हैं और कुछ।
2: हाँ, अकेले बजा रहा हूँ तो मेरी ही सोच होती है।
1: बराबर।
2: जब अकंपनी कर रहा होता हूँ तो वो सोच एक्चुअली सिंगर की होती है, और आपका काम होता है कि वो सोच को कैसे आप एक तो उनकी शैडो बन के कैसे रह सकते हो,
1: हाँ,
2: वो
1: हाँ।
2: और प्लस उसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो वो मोमेंट। ये जो दो चीजें होती है कि कहाँ बजाना है कहाँ नहीं बजाना है,
1: बिल्कुल,
2: ये सब

0: चीजें जो नेचुरली आप सीखने लगते हो जब आप वोकलिस्ट के साथ अकंपनी करने की कोशिश करते हो।
1: जी, शास्त्रीय संगीत सीखने की ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम किन कलाकारों को सुनते हैं, किन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत इंस्पायरिंग होती है ये रिकॉर्डिंग्स।
0: यस यस यस।
1: आप किसका नाम लेना चाहेंगे जहां तक गिटार की बात है?
0: अच्छा, जहां तक गिटार की बात है तो दो ऐसे जायंट्स हुए हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो गिटार पे, मतलब एक तो पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी,
1: बिल्कुल,
0: जो स्लाइड गिटार, हवाईयन गिटार जो उन्होंने बजाई,
1: हाँ।
0: और फिर उसी को लेके जो आगे लेके गए वही सोच को पंडित विश्वमोहन भट्ट जी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो, बड़े नाम है,
0: बहुत बड़े नाम है,
1: हाँ। और इनका योगदान बहुत विशाल है,
0: बहुत बहुत बहुत। और दोनों के स्टाइल्स भी इतने अलग है कि वो जब आप सुनते हो दोनों का म्यूजिक, एकदम कुछ अलग ही चीज मतलब सुनने को मिलती है।
1: जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में करियर शायद कुछ और होता और जीवन कुछ किसी और तरह का होता?
0: ऐसा नहीं लगा मुझे एक्चुअली,
1: क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई एक अलग क्षेत्र में आपने की है और अब आप पूरी तरह से एक कलाकार के रूप में अपना करियर बना रहे हैं।
0: नहीं, क्योंकि एक चीज ऐसी थी कि कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा, अगर मतलब वो मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक कभी नहीं था कि अच्छा इसमें पैसा ज्यादा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ।
1: हाँ,
0: वो एक्चुअली वो म्यूजिक अच्छा लग रहा है इसलिए मैं म्यूजिक कर रहा हूँ।
1: क्या बात,
0: ये जो सोच थी वो पहले से ही थी मुझ में, तो फिर
1: क्या बात, ये एक उस तरह की फलसफाना सोच है, फिलोसॉफिकल सोचने का जो तरीका है, बहुत अच्छे। क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में, कलाकार के रूप में आपकी अपेक्षाएं क्या है?
0: मुझे जितना हो सके ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए मिलना चाहिए, उतना ही है, बाकी तो वैसे तो जो सीखने में जो मजा आता है वो तो आता ही है, रोज वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा होता है जब आपकी थॉट इम्प्रूव होते रहती है। जो रियाज में से एक तो मैकेनिकल रियाज होता है, बट एक पॉइंट के बाद वो थॉट के लेवल पे आ जाता है कि अच्छा आप एक ही चीज को कितने तरह से बजा सकते हो, एक ही चीज को कैसे अलग तरीके से, और उसमें मजा आने लगता है, मतलब वो एक सेल्फ फुलफिलिंग चीज हो जाती है कि आप रियाज कर रहे हो और आपको वो रियाज में से इतना सब मिल रहा है कि आप एक्चुअली बहुत कुछ ऐसे चीजों के पीछे भागना कम हो जाता है एक पॉइंट के बाद।
1: ऑडियंस भी बहुत बदल गई है, एक जमाना था जब लाइव शोज लोग देखने जाते थे और कुछ होता नहीं था, रेडियो पे सुनते थे क्लासिकल म्यूजिक, बाद में दूरदर्शन आया, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, बहुत सारे ऑप्शंस थे लोगों के पास देखने के लिए।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: अब तो इंटरनेट के जरिए जब चाहे जो चाहे हम देख सुन सकते हैं।
0: यस।
1: तो आपको क्या फर्क मालूम पड़ता है अब और ऐसी बदली हुई ऑडियंस और खासतौर से यंग जनरेशन,
0: राइट,
1: उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे मंच पर?
0: क्या करना चाहूंगा,
1: क्योंकि उनकी सोच की उन्हें जो अच्छा लगता है उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए।
0: तो अभी एक्चुअली हो कैसे गए और इससे एक्चुअली हम एज एन आर्टिस्ट भी काफी गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग जब एज अ रेफरेंस मटेरियल सुन रहे होते हैं म्यूजिक, तो हम लोग उस्ताद आमिर खान जी का सुन रहे होते हैं, उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी,
1: और
0: वो टाइम का जो म्यूजिक था जब बहुत ज्यादा ठहराव था, एक राग डेढ़ घंटा दो घंटा गाते थे वो लोग।
1: जी, जी, जी।
0: और ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स है, मतलब ऐसा तो सुना है कि तीन चार घंटा भी गाते थे तब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक ही राग तीन तीन चार चार घंटे चलता था।
0: ये चीज हमने नहीं देखी, हमारी जनरेशन ने कभी देखी नहीं, हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में जितना सुना है उतना। और होता कैसा है, जब आप ये सुन रहे होते हो तो आपका म्यूजिक भी वैसा होने लगता है कि आपको भी स्लो अलाप करना पसंद आने लगता है और
1: अच्छा।
0: लेकिन जब आप पहली बार ऑडियंस के सामने जाते हो तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि आपका स्लॉट ही 45 मिनट्स का होता है या 30 मिनट्स का होता है, और उसमें आप आधा घंटा आलाप तो कर नहीं सकते। ये जो सोच है ना, ये एक्चुअली हमारे गुरुजी ने काफी इसके बारे में गाइड किया है, क्योंकि और मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशली, जितने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं उतने ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा अभी ये सिचुएशन में ऐसे करना है। आपका एक प्रैक्टिस रूम में जो होता है वो एक अलग है, जब आप ऑडियंस के सामने जाते हो तो अलग होता है। ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है, मतलब उस तो थोड़ा फास्ट पेस होता है, तो अभी अगर मेरे पास आधे घंटे का स्लॉट है तो मैं आलाप बहुत नहीं कर सकता हूँ, और ऑडियंस भी उतना आलाप एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, एक टाइम के बाद फोकस शिफ्ट होने लगता है। तो फिर उस तरह से जिस ऑडियंस के सामने आप हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा
1: अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना पड़ता है,
0: प्रेजेंटेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। बहुत बार स्टेज पे आपको दिख रहा होता है कि अच्छा अभी ऑडियंस नहीं पकड़ में नहीं, अभी थोड़ा ड्रिफ्ट हो रही है उनके थॉट, तो फिर आपको थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ता है, अच्छा अभी ये अच्छा लग रहा है तो फिर इस तरह से बजाते हैं।
1: कभी ऐसा हुआ होगा कि आप मंच पर है, आपने शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, मगर सामने ऑडियंस शायद कुछ और सुनना चाहती है?
0: नहीं, लेकिन अभी अब मंच पर जब बुलाया जाता है तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बुलाया जाता है, तो तब एक बात होती है कि आप प्रेजेंटेशन थोड़ा मॉडिफाई करो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाओ एज एन आर्टिस्ट, और एक बात होती है कि आप परफॉर्मेंस ही चेंज कर दो। अभी अगर आप म्यूजिक ही चेंज कर दो

0: फिर उसका कोई पॉइंट नहीं होता है। तो आप जितना प्योर रख सकते हो, क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक प्योर होना ही चाहिए।
1: बिल्कुल, वो तो बात है।
0: और उसी के अंदर काफी स्कोप है आपको डिजाइन करने का, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक शुरू बहुत स्लो टेम्पो से होता है और जा भी बहुत फास्ट टेम्पो तक, तो वो रेंज बहुत है। तो आप उसी में काफी कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ और ही बजाने लगो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर करो।
1: और आपके अब तक 15-16 सालों से आप सीख रहे हैं, बहुत से राग अब तक आपके रियाज में आ चुके होंगे,
0: राइट?
1: कौन सा राग आपको फेवरेट लगता है अपना?
0: ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में फोकस ही चेंज हो जाता है कि अच्छा अभी ये राग में थोड़ा और करना है, फिर
1: अच्छा अच्छा
0: फिर नया राग शुरू हो जाता है। तो हम लोग कुछ ऐसे राग होते हैं जो हमेशा उसमें रिटर्न आते ही है, कहीं भी नया राग हो, कुछ भी हो, तो भी, तो जैसे जोग हो गया, बिहाग हो गया, मालकाउंस, चारुकेशी, किरवानी,
1: अच्छा,
0: भैरव, ये राग एक्चुअली मतलब ये दे आर कंसेप्ट इन देमसेल्व्स, ऐसे बोल सकते हो। कि आप भैरव हो गया, तो भैरव का एक कंसेप्ट होता है जो आपको अगर समझ में आया तो फिर आप अलग अलग तरह के भैरव बजा सकते हो।
1: अच्छा।
0: या मालकाउंस का एक कंसेप्ट होता है, वो एक बार समझ में आ गया तो आप अलग अलग तरह के काउंट्स बजा सकते हो। तो ये जो बेसिक्स है उसमें तो करते ही रहना पड़ता है।
1: अच्छा। मैं देख रहा हूँ आप हाथ से भी बजा रहे हैं, मतलब उंगलियों से, और आपके एक उंगली में एक स्टील का रॉड लगा हुआ है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप, वो भी जरा बताइए।
0: ओके, ये एक्चुअली वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आएगा अभी ऑडियो में, लेकिन गिटार पर क्या होता है ना, एक स्लाइड एक कंसेप्ट है जो मैंने पहले बोला था ब्लूज गिटार में। वो क्या होता है, पाइप जैसा एक स्लाइड होता है जो आपके रिंग फिंगर के ऊपर आप लगा देते हो और उससे आप स्लाइड कर सकते हो। जैसे मेरा साउंड आ रहा है, सिमिलर साउंड आएगा उसमें से भी
1: जी,
0: लेकिन उसमें फिंगर ब्लॉक हो जाती है। तो अब मैं जब, मेरे गुरुजी वायलिनिस्ट है तो मैं वायलिन सुन सुन के सीख रहा था, और थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि अरे फ्रेट्स के वजह से मुझको वो स्मूथनेस आई नहीं रही है जो वायलिन पे आती है।
1: अच्छा।
0: वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है।
1: हाँ हाँ।
0: और वो बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है
1: जी।
0: तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया और मुझे ये एक स्लाइड

0: लेकिन उसमें फिंगर ब्लॉक हो जाती है. तो अब मैं जब मेरे गुरुजी वायलिनिस्ट है तो मैं वायलिन सुन सुन के सीख रहा था और थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि अरे फ्रेट्स के वजह से मुझको वो स्मूथनेस आई नहीं रही है जो वायलिन पे आती है.
1: अच्छा.
0: वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है.
1: हाँ, हाँ.
0: और वो बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है
1: जी.
0: तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया और मुझे ये एक स्लाइड मेकर है जो यूएस में है.
1: अच्छा.
0: वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं. तो उनको आपको रिंग फिंगर का साइज देना होता है और फिर वो
1: बना करके
0: भेजते हैं.
1: अच्छा अच्छा.
0: तो उनसे मैंने ऑर्डर किया और फिर मैंने सीखने लग गया. तो बेसिकली ये एक रिंग है, मतलब जो अपनी नॉर्मल रिंग होती है वैसी रिंग है
1: जी जी.
0: और उसको एक बार अटैच्ड है और वो बार मोहन वीणा का जो बार होता है वैसा ही है, बट बहुत छोटा वर्जन है उसका.
1: अच्छा.
0: और बस वो जब यूज कर रहा होता हो तो मैं मेरी फिंगर से उसको पोजिशन में रखता हूँ और हाँ. जब नहीं यूज करना हो तो वो पीछे लटकते रहता है और वो फिंगर भी फ्री हो जाती है, तो मैं अच्छा. फिंगर से भी बजा सकता हूँ.
1: अच्छा. तो अब उस धुन की तरफ बढ़ते हैं जो आपने खुद बनाई होगी, उसकी झलक हमें सुनवाएं. अब तानपुरा ले सकते हैं. या कोई ऐसी धुन जो किसी और कलाकार की आपने सुनी है और आपको बहुत पसंद आई, आपने उसे रिप्रोड्यूस किया.
0: हाँ, ऐसे तो है. तो एक धुन है राग देश में
1: जी,
0: जो एक्चुअली मैंने रिप्रोड्यूस करने से ज्यादा सीखी है गुरुजी से, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ी सी झलक उसका मुकड़ा.
1: स्वागत है. तो

अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की दूसरी कड़ी। तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: कौन है?
1: मैं लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसकी तुम आरती कर रहे थे।
0: लक्ष्मी देवी माँ, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।
1: मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गरीब दास, तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मांगो, क्या मांगते हो?
0: मैं क्या मांगू देवी माँ? मैं
1: धन संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूँ गरीब दास, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
0: लेकिन देवी माता, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मैं
1: अरे, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है गरीब दास? मुझे देखकर कर तुम्हारी आंखें क्यों चौंधिया रही हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो?
0: आपका रूप ही ऐसा है देवी माँ, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी कभी देखी नहीं।
1: घबराओ नहीं गरीब दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो जी चाहे मांग सकते हो।
0: देवी माँ, क्षमा करना, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का तनिक समय दीजिए।
1: गरीब दास, मैं तुम्हें रात भर का समय देती हूँ, खूब सोच लो। सुबह का सूरज निकलते ही मैं फिर आऊंगी। मैं फिर आऊंगी।

0: मैं फिर आऊं, मैं फिर आऊं।
1: कृपा देवी माँ, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। धनिया, अरे ओ धनिया, है सो गई? अरे उठ तो है, अरे ये तो बेहोश पड़ी है, लक्ष्मी जी को देख के बेहोश हो गई। धनिया, ओ धनिया, अरे आंखें खोल धनिया।
2: अरे वो औरत गई?
1: औरत? अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी माँ।
2: लक्ष्मी जी?
1: हाँ माता लक्ष्मी, हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी।
2: वरदान?
1: हाँ सवेरे फिर आएंगी, पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे?
2: अरे दया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मूर्छा आ गई।
1: अरे मेरा भी तो यही हाल था धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: मैं बताऊं?
1: ओहो तो जल्दी से बोल।
2: सुनो, तुम कहते थे ना मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका।
1: ओफो तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
2: हाँ हाँ वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देते हो पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
1: अरे धनिया, ए धनिया तू समझती क्यों नहीं, देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों ना मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। झुमका तो बस कानों में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा।
2: झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से?
1: अरे धनिया तू कैसी बातें करती है, देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा? राम राम राम, अरे भगवान मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ।
2: क्या सोच रहे हो?
1: मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है, गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं, क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और 4 दीवारों वाला घर मांग ले। बस हम धूप में ना जलेंगे, ना पानी में भीगेंगे, ना सर्दी में ठिठुरेंगे।
2: हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची, घर।
1: हाँ, देवी जी आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ हमें घर दे दो, एक छत वाला 4 दीवारों वाला एक घर, ठीक है ना धनिया?
2: हाँ बिल्कुल ठीक है, घर।
1: हाँ तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ, देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या?
2: नहीं तो।
1: ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है।
2: एक बात कहूँ?
1: बोल।
2: लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा?
1: जो मांगेंगे वही मिलेगा।
2: तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों ना मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ याद आया, एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था, मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं।
2: अच्छा?
1: अरे हर गली फू फू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूं कि हे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीब दास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और मेरी धनिया, ओए मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी।
2: और मेरे सोने के झुमके?
1: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरे लिए सोने का चंदर हार ले दूंगा।
2: हाय सोने का चंदर हार?
1: हाँ चंदर हार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी, सो जा।
2: अरे हाँ हाँ तो फिर तुम ही सो जाओ, जल्दी से सो जाओ।
1: थानेदार क्या, थानेदार तो सलाम मारेगा।
2: सो जाओ सो जाओ।

0: Tania. Tania सो गई क्या?
1: नहीं तो?
0: ससुरी नींद क्यों नहीं आ रही? तनिया मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है।
1: अब क्या सोचने लग गए?
0: सोच रहा हूँ देवी जी रोज रोज तो वरदान देने नहीं आएंगी। जो कुछ मांगना है एक ही बार मांग लो। कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो।
1: अरे कलेक्टर साहब से भी बड़ी?
0: हाँ धनिया, तुझे याद है एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे, इस सड़क से एक मोटर निकली थी, मोटर में झंडा लगा हुआ था और सड़क की दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था, मालूम है कौन था वो?
1: कौन था?
0: सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास चार मोटरें हैं, चार कोठियां हैं, चार बीवियां हैं, चार
1: दैया चार।
0: हाँ धनिया सब कुछ चार चार। अरे रे क्या हुआ धनिया, क्या हुआ?
1: तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी चार बीवियां रखोगे।
0: नहीं रे, मेरी तो एक धनिया ही चार के बराबर है। मेरा मतलब था धनिया, मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी चार मोटरें होंगी, चार कोठियां होंगी, चार
1: हाय सब कुछ चार चार। मेरे झुमके भी चार चार।
0: तेरे झुमके भी चार चार
1: और चंदरहार भी चार चार।
0: ओ चंदरहार भी चार चार।
1: हाय हाय।
0: लेकिन धनिया सुन, अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले।
1: अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते।
0: सारी रात गुजर गई, हम सो भी ना सके। देवी लक्ष्मी माँ आप आ भी गई?
2: हाँ, मैं आ गई गरीब दास। मांगो, क्या मांगते हो?
0: देवी माता क्षमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीब दास?
0: मैं सच कह रहा हूँ देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब दास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
2: लेकिन क्यों?
0: देवी जी, देवी माँ, मोटर बंगला हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके, आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है तो ये सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा, हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी। नहीं नहीं देवी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी रूखी सूखी और ये आसमान की छत कबूल है। सोने का वो बंद पिंजरा हमें नहीं चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर हमारी सांस घुट जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए।
2: गरीब दास तुम घसियारे हो लेकिन बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हूं। लो अपनी ओर से मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी।
0: ये क्या है देवी?
2: ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता, इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती, इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती। इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान प्रेम सुख शांति और संतोष का उजाला हो।

0: अंधेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिट्टी के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे, ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा। इसे संभाल के रखना।
1: धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता धन्य हो, मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा।
0: तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे तभी वास्तव में इस देश में दिवाली होगी। दिवाली, दिवाली।

मंगल वरदान हवा महल के अंतर्गत अभी आपने कुंभे श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत यह नाटिका सुनी।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 पर। रात के 8:15 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अजीत का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज हम जो गर्मी देख रहे हैं उस गर्मी के विषय को लेकर, मतलब अत्यधिक गर्मी, हीट वेव और लू, इस विषय को लेकर ये कार्यक्रम आज आपके बीच आए हैं, जिसमें इस कार्यक्रम में लू से संबंधित जानकारी, उसके बारे में आपको बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों को लेकर के ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा गाने। श्रोताओं, हीट वेव की जो स्थिति है, शारीरिक शरीर की जो कार्यप्रणाली है उस पर ये बहुत प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु तक भी हो सकती है। इसके प्रभाव को करने के लिए क्या क्या किया जाए, क्या जरूरी है, वो स्टेप्स क्या होंगे जिनसे आप हीट वेव से या लू लगने से बच सकते हैं, इन्हीं बातों की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में होगी। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म क्या दिल ने कहा के इस प्यारे से गीत के साथ। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज है। संजय के लिखे इस गीत को हिमेश रेशमिया ने संगीत से सजाया है।

गीत गुंजन कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं अत्यधिक गर्मी, हीट वेव और लू से जो है इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में। तो इसके लिए श्रोताओं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अगर प्यास न लगी हो तब पर भी आप पानी जरूर पिए। घर के बाहर जाते समय पानी का जो एक बोतल है वो साथ लेकर जाएं, ORS पिए। घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी जिसे हम माड़ भी कहते हैं, नींबू पानी, छाछ, इन चीज़ों का उपयोग करें जिससे शरीर में पानी की जो कमी है उसकी भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियों जैसे तरबूज हो गया, खरबूज, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, अनानास, खीरा, ककड़ी इत्यादि का जो है बढ़ चढ़ कर गया है इस वक्त सेवन करें जिससे पानी की कमी आपके शरीर में न होने पाए। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म कभी हाँ कभी ना से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज है। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया जतिन ललित ने।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhya@gmail.com पर।
0: ayodhya@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन।

0: के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: गीत गुंजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आज के इस कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ साथ हम आप बात कर रहे हैं अत्यधिक गर्मी, हीट वेव और लू से बचने के बारे में। तो दोस्तों, इससे बचाव के लिए अगर बहुत गर्मी पड़ रही है, और आप समझ सकते हैं कि गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा शरीर पर पड़ता है, इसके लिए आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर खुले में काम करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें, और शरीर को अपने सर को ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा जैसी चीज़ों का प्रयोग करें। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहनें, और पैरों के बचाव के लिए जूते और चप्पल का प्रयोग करें। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म फूल से। कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की प्यारी सी आवाज है, आनंद बख्शी के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत।

श्रोताओं, ज्यादा गर्मी या लू से बचने के लिए उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि एक वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं और अन्य छोटे बच्चे भी, गर्भवती महिलाएं, बाहरी वातावरण में काम करने वाले व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, विशेषकर हृदय के जो रोगी हैं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से जो ग्रसित लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को ठंडे क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में ठंड से जा रहे हों तो उनको जो है विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच करके रहें। इस समूह के जो लोग होते हैं सामान्य आबादी की तुलना में जो हीट वेव या लू जो होती है उसमें वे अधिक संवेदनशील होते हैं। इन समूहों के बचाव पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म क्या यही प्यार है से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज है। जलीश शेरवानी के लिखे इस गीत को जो है संगीत से सजाया है साजिद और वाजिद ने।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090।
4: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
7: श्रोताओं, चलते चलते कार्यक्रम में एक और गीत सुन लेते हैं। फिल्म मासूम से अभिजीत और साधना की आवाज, आनंद राज आनंद का लिखा हुआ गीत और संगीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ गीत गुंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9।

0: हमारे दिल्ली केंद्र से
1: समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 billion से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
5: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक

0: की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी विप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है।

0: आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

0: के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairman

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: कार्यक्रम में आप सुनते हैं गुलाम अली की गाई हुई ये गजल।

0: गुलाम अली की गाई हुई इस गजल के साथ ही श्रोताओं अब समाप्त होता है गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल। FM बैंड 101.9 पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। रात के 9:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
3: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 90-44-20-70-70।
0: नमस्कार आदाब मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आप सुन रहे हैं हेलो अयोध्या कार्यक्रम। समय हो चला है 9:30 रात के और अगले एक घंटे यानी 10:30 तक हम बातें करेंगे देंगे कुछ जानकारी सुनवाएंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गाने जो आधारित होंगे आपकी फोन इन फरमाइशों पर। अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं अपनी फरमाइश हमको बताना चाहते हैं सुनना

0: चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गानों को तो डायल कीजिए हमारा नंबर 7376804090। नंबर एक बार फिर से सुन लें 7376804090 7376804090। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोपहर में बिना किसी जरूरी काम के बाहर न निकले बचें और अगर जरूरत पड़े तो सिर ढककर जरूर निकले। फिलहाल शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की पहली कॉल, देखते हैं कौन से पहले कॉलर हमसे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रही हैं।
1: सर मेरा नाम सुमन है, हम यहाँ बीकापुर ताड़ी से बोल रहे हैं।
0: सुमन जी ने बीकापुर से हमें कॉल किया है, अयोध्या जिले की एक तहसील है ये। सुमन जी, सबसे अब आगे का स्टेप ये है कि अपनी फरमाइश हमें बता दें, गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: सर हम साथ साथ है फिल्म का, मैया यशोदा ये तेरा का नहीं।
0: हम साथ साथ है फिल्म का गाना सुनना है आपको। अच्छा सुमन जी ये बताइए, इस समय तो गर्मी का मौसम चल रहा है ना?
1: हाँ सर, गर्मी का मौसम
0: धूप भी बहुत तेज हो रही है, आज भी धूप थी काफी तेज थी, तो ये गर्मी वगैरह से बचाव के लिए ध्यान रख रही है ना?
1: क्या सर?
0: जैसे धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है तो हीट वेव या लू वगैरह चल रही है,
1: तो बहुत हो रही है,
0: तो उससे बचने के लिए जो संसाधन जो उपाय होते हैं वो आप कर रही है ना?
1: हाँ सर कर रहे हैं।
0: ठीक है सुमन जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं फिल्म हम साथ
1: और
0: साथ।
1: सर आप ठीक हैं?
0: जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: अच्छा
0: जी, चलिए हम आपको सुना रहे हैं आपका पसंदीदा गीत फिल्म हम साथ साथ हैं से। कॉल करने के लिए सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार।

0: शतो कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, गूगल प्ले स्टोर और iOS पर भी ये उपलब्ध है ऐप। और 7386 4090 ये हमारा फोन नंबर है, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में और सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गानों को, तो देर न करें, 7386 4090 अंग्रेजी में जान लें, 7376804090 ये हमारा नंबर है, इस नंबर को लगाएं और सुनिए अपनी मनपसंद फरमाइशी फिल्मी गानों को। और कुछ बातें भी अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। देखते हैं कौन से श्रोता हमसे फिलहाल जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? सोनू यादव जी की कॉल आई है, अयोध्या जिले से ही आपने कॉल किया है। सोनू यादव जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: तेरे संग प्रीत लगाई सजना।
0: तेरे संग प्रीत लगाई सजना नहीं, तुझ संग प्रीत लगाई सजना है। ठीक है सोनू जी, फिल्म कामचोर का ये गाना है। सोनू जी करते क्या है आप?
1: हम सर पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में है सोनू?
1: आपकी बार 9th में।
0: नाइन्थ में है, कौन सी स्ट्रीम है, आर्ट साइड से है या साइंस साइड से? साइंस साइड से ही है। ठीक है सोनू जी, हम आपकी फरमाइश पर फिल्म कामचोर का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। ठीक है, कुमार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है कॉल करने के लिए। सोनू हमें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल न करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: हेलो अयोध्या कार्यक्रम, आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से सुन रहे हैं। 7384-4090 ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में, सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गानों को, तो देर मत कीजिए। अभी हमारे पास ढेर सारा समय बाकी है जिसमें हम आपसे बातें भी कर सकते हैं और सुनवा सकते हैं आपके मनपसंद मनचाहे फिल्मी गाने। देखते हैं कौन सा श्रोता फिलहाल हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
3: जी सर।
2: जी कार्यक्रम में, जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
3: जी सर, हमारा नाम मुन्ना है सर, उर्फ मंसूर अली सर, हम सुहावल से बोल रहे हैं।

0: मुन्ना उर्फ मंसूर अली जी की कॉल है हमारे पास सोहावल से, इन्होंने कॉल किया है। मंसूर अली उर्फ मुन्ना या मुन्ना उर्फ मंसूर अली जी, ये बताएं कि गाना कौन सा सुनिएगा आप?
1: मुन्ना मुन्ना से जानते हैं सर।
0: अच्छा, मुन्ना मुन्ना के नाम से ज्यादा ठीक है, आगे अब आपको मुन्ना ही बुलाते हैं। मुन्ना जी ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: सनम बेवफा का सुनेंगे।
0: सनम बेवफा का गाना सुनना चाहा है आपने?
1: अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना।
0: ओके ठीक है, वो मुन्ना जी हम आपकी फरमाइश पर आपको ये गीत सुनवाएंगे। करते क्या हैं आप, कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में?
1: जी सर, हमारा शटरिंग का कारोबार है सर।
0: शटरिंग का कारोबार है वहीं सोहावल में?
1: जी सर। जी सर जी।
0: तो दिन भर आपको तो आपको तो दिन भर वहाँ पर लगे रहना पड़ता होगा, और चूंकि हाईवे के किनारे है तो जो गर्मी का मौसम है इस वक्त उसका तो प्रभाव बहुत पड़ रहा होगा आपके शरीर पर।
1: नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ एकदम बगिया सटी हुई है ना सर, आम की बगिया काफी सटी हुई है, इसलिए ठंड हमेशा रहता है।
0: अच्छा, ठंडा रहता है वहाँ पे, मतलब बहुत डिस्टरबेंस नहीं है आपको? नहीं, जैसा आपने बताया कि हाईवे के किनारे है तो मुझे लगा कि दिक्कत होती होगी, लेकिन आप पेड़ों के बीच में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म सनम बेवफा का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: थू सखी सुनते हो कार्यक्रम नामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 7384-4090 ये हमारा फोन नंबर है। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस प्यारे से संगीत भरे कार्यक्रम में तो देर किस बात की है। अभी भी हमारे पास करीब 40 मिनट के लगभग का समय बाकी है तो देर किस बात की है। 7384-4090 नंबर लगाइए जुड़ जाइए हमसे सुनिए अपनी मन पसंद फरमाइशी फिल्मी गानों को। देखते हैं कौन से श्रोता फिलहाल हमसे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो आप नमस्ते
3: जी नमस्ते नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं।
4: भभूतीलाल
3: कुचेरा बाजार से भभूतीलाल जी की कॉल हमारे पास आ चुकी है। भभूतीलाल जी सबसे पहले ये बता दें कि गाना कौन सा सुनिएगा फिल्म का नाम गाने के बोल बताए।
4: गाना
3: ठीक है भभूति जी हम आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत सुनवाएंगे। कुछ अपने बारे में बताएंगे हमारे श्रोताओं को करते क्या हैं आप।
4: क्या बोल
3: जी करते क्या हैं आप।
4: सर मैं तो नौकरी काम करता हूँ दुकान पर।
3: अच्छा अच्छा वहीं कुचेरा बाजार में ही
4: जी।
3: अच्छा अच्छा और रेडियो भी सुनते हैं सुनने का समय मिल जाता है नौकरी के साथ। तो क्या मतलब दिन में भी सुनते हैं या जहाँ काम करते दुकान पर। अच्छा अच्छा मतलब जिस दुकान पर आप काम करते हैं वहाँ रेडियो चलता रहता है।
4: वहाँ पर नहीं लेकिन जाता रहता है तो रेडियो अपने साथ में रखते हैं।
3: अच्छा रेडियो अपने साथ मतलब आप ऐप से नहीं सुनते हैं
4: नहीं,
3: जो पारंपरिक माध्यम है रेडियो हमारा उससे सुनते हैं।
4: जी जी
3: अच्छा अच्छा
4: मार्केट वाला है ना।
3: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
4: हमेशा अपने साथ में।
3: अच्छा अच्छा ठीक है भभूति जी हम आपकी फरमाइश पर फिल्म सड़क का ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए हमें कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।
4: नमस्ते
3: जी नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है?
1: बेनीगंज अयोध्या से बोल रहे हैं। बेनीगंज अयोध्या से।
0: बेनीगंज अयोध्या से, नाम बताएं।
1: मदन लाल सेन।
0: मदन लाल सेन जी, क्या करते हैं?
1: हम ठेला चलाते हैं सर।
0: अच्छा, मतलब ठेला चलाते हैं, ठेले पर मतलब
1: अलमारी वगैरह ढोते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और रेडियो कब सुनते हैं आप मदन लाल जी?
1: रेडियो रात में आते बजे सुनते हैं सर।
0: अच्छा, रोजाना सुनते हैं?
1: हाँ डेली सुनते हैं, डेली मिला रहे, मिलता नहीं बताता है देर देर।
0: अच्छा, इससे पहले कभी आपकी कॉल शामिल हुई आकाशवाणी अयोध्या के इस कार्यक्रम में?
1: हाँ हाँ शामिल हुई है, आज 2 महीने से ऊपर हो गए।
0: 2 महीने हो गए और आज आपकी कॉल लगी है?
1: जी, बड़े कोशिश करने के बाद लगी है।
0: गाना कौन सा सुनिएगा मदन लाल जी?
1: जी
0: गाना कौन सा सुनिएगा?
1: गाना सुना रही, उपकार फिल्म का।
0: उपकार फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे?
1: धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: उपकार फिल्म का देशभक्ति से सराबोर आपने गीत चुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है मदन लाल जी, आपकी फरमाइश पर यह गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार।

0: श्रोताओं, हेलो। अयोध्या कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आपको भी न पछताना पड़े कार्यक्रम में शामिल होने से। तो अभी भी हमारे पास लगभग आधे घंटे का समय शेष है। 7376-4090 ये हमारा नंबर है। कार्यक्रम में जल्दी से शामिल हो जाइए, फोन लगाकर 7376-4090 एक बार फिर से सुन लें। और देखते हैं कौन से श्रोता अब हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। 7386-4090 ये हमारा फोन नंबर है। अगर आप भी जो श्रोता हमें सुन रहे हैं शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, सुनना चाहते हैं अपने मन पसंद फरमाइशी फिल्मी गानों को, तो देर किस बात की है। अभी हमारे पास लगभग 20 मिनट का समय है। देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं 7386-4090 ये नंबर लगाकर। हेलो।
2: हेलो सर, नमस्ते
1: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
2: मेरा नाम राकेश है, ग्राम गरौली, पोस्ट खंडासा, कुमारगंज।
1: राकेश जी ने भी हमें अयोध्या जिले से ही कॉल किया है। आज की हमारी अब तक की सारी कॉल्स जो हमने आज शामिल की हैं, जो लगी हैं, वो सारी की सारी अयोध्या जिले की ही रही हैं। राकेश जी, फिलहाल ये बताइए कि गाना कौन सा सुनिएगा आज आप?
2: ये सर
1: बादशाह फिल्म का कौन सा गाना?
2: मेरे रश के कमर। सर,
1: मेरे रश के कमर। करते क्या है राकेश, कुछ बताएंगे अपने बारे में?
2: जी सर, आपकी इंटर में थे।
1: जी
2: इंटर में थे सर।
1: अच्छा, आपकी बार इंटर में थे और अब आगे?

0: सर, अब बीएससी करेंगे।
1: ठीक है राकेश जी, आगे के भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं यहाँ से और आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा है फिल्म बादशाहों का ये प्यारा सा गीत, मेरे रश्के कमर जिसके बोले। जी नमस्कार।

0: पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: हेलो उद्याघर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं कौन से श्रोता हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: जी नमस्कार, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
3: जी सर, मैं राजकमल मौर्य अयोध्या से बोल रहा हूं।
2: राजकमल मौर्य जी?
3: जी सर।
2: अयोध्या से बोल रहे हैं, गाना कौन सा सुनिएगा राजकमल जी?
3: जी सर, खुददार फिल्म का सुना दीजिए, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।
2: खुददार फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप। राजकुमार जी, राजकमल जी करते क्या है, कुछ बताएंगे अपने बारे में?
3: जी सर, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ सर।
2: अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग वगैरह भी करते हैं?
3: जी सर, ऑनलाइन क्लास चलते हैं।
2: अच्छा, ऑनलाइन क्लास करते हैं और घर पर रखे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार, राजकमल जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी मन पसंद पर फरमाइशी फिल्मी गीत। फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोल हैं तुम सा कोई प्यारा। तो गीत को एंजॉय कीजिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं भी।
3: जी सर, थैंक यू।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
2: हेलो अयोध्या कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 7384-4090 ये हमारा फोन नंबर। और अब देखते हैं आज के हमारे आखिरी कॉलर कार्यक्रम में कौन से हैं। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं।
3: सर दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से बोल रहे हैं।
2: दिलशाद हुसैन जी हमारे रेगुलर श्रोता हैं और आज की ये पहली कॉल है जो अयोध्या से बाहर की आई है, आजमगढ़ से आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। दिलशाद जी जल्दी से बता दें गाना कौन सा सुनेंगे आज आप।
3: फिल्म फांसी का सुना दीजिए।

0: जी
1: फांसी,
0: फांसी फिल्म का।
1: हाँ, जब बाकी होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा।
0: दशा जी माफी चाहेंगे, ये गीत तो मतलब ये फिल्म तो हमारे पास है नहीं, कुछ और बता दें।
1: अरे आपके पास है, बराबर बजता है
0: बजता है फांसी।
1: ये। अभी कार्यक्रम किस टीम ने कहा मैं बजा था, पुरानी
0: फांसी फना
1: वाली।
0: दिख तो नहीं रहा है। गाने के बोल क्या हैं?
1: जब आती होगी याद मेरी, मोहम्मद
0: जब आती होगी याद।
1: रफी, नीला चंद्र वर्कर की आवाज है।
0: अच्छा दिशा जी करते क्या है तब तक ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जीवन लिखी तू का सुनवा दीजिए। हाँ
0: अच्छा मिल गई मिल गई। फांसी ठीक। गाना ये मिल गया है। जब आती होगी याद मेरी।
1: मेरी
0: और ठीक है चलिए आपकी फरमाइश पर बज चुका ये गाना। ठीक है कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद सर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हेलो अयोध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.9 पर, और अब ये सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: 11 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण

0: प्रशिक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation